मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि तदनुसार 5 जून 2026 हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। श्रोताओं स्वीकारें नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे मातृवंदना। आइए हम आपको सुनवाते हैं शर्मिला बटव्याल और रामकिशन चंदेश्री के स्वर में सूरदास का भजन।

0: इस भजन के साथ ही सुप्रभातम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। कृषि संकेत में लीजिए जानकारी, सुनिए खीरे की उन्नत खेती के बारे में।
1: किसान भैलो, खीरा एक मौसमी फसल आए। जौनी के खेती गर्मी के महीना में अधिकतर कीन जाती। खीरा के खेती सगले भारत में कीन जाती। यह एक कम समय के फसल आए जौन अपने जीवन चक्र का 60 से 80 दिन में पूरा करत है। खीरा शरीर में पाचन शक्ति का बढ़ावे में मदद करत है। खीरा में प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन, कार्बोहाइड्रेट ये सब तत्व पाए जाती। ओइसन तक खीरा गर्मी के महीना में होत है, पर बरसात के महीना में खीरा के फसल अधिक होती। खीरा का सलाद के रूप में पूरे विश्व में बहुत महत्व दीन जात है। खीरा का सलाद के अलावा उपास के समय फलाहार के रूप में उपयोग कीन जात है। एके अलावा ऐसे कईक मेर के मिठाई घलाए बनाई जाती है। पेट के गड़बड़ी और कब्ज में खीरा का औषधि के रूप में उपयोग कीन जात है। खीरा कब्ज के दर्द और एके अलावा पीलिया, प्यास, ज्वर, शरीर के जलन, गर्मी के महीना के सगले दोष दूर होते। खीरा के खेती शीतोष्ण और समशीतोष्ण दोनों मेर के जलवायु में कीन जाय सकत ही। खीरा के फूलन का खिले के खातिर 13 से 18 डिग्री तक के तापमान की जरूरत होती और पेड़ के बढ़े के खातिर 18 से 24 डिग्री तापमान के जरूरत होती। खीरा के खेती हर मेर के माटी में कीन जाती। पह दोमट और बालुई दोमट भूमि में खीरा के खेती अधिक निकही होती। नदिया के किनारे में खीरा के खेती निकही होती। खीरा के खेते में पानी निकरे के रास्ता हो का चाहिए जौने खेते में पानी जमा न हो पावे। खीरा के प्रजाति कईक मेर के होती हैं, उनमें से कुछ ता आही जापानी लॉन्ग, स्ट्रेड एड, हिमांगी, पोई नसर्ड, जो वाइट सिड। खीरा के खेती करे के खातिर खेते के तैयारी निकहे से करे का चाहिए। एक एक खातिर सबसे पहले भूई के जुताई करत समय माटी पलटे वाले हल से निकहे से जुताई कैले का चाहिए। 2 से 3 बेर सामान्य हल से मतलब हर वर्दा से और कल्टीवेटर से जुताई कैल के अंतिम जुताई कहे के बाद खेते में 200 से 300 किलोग्राम गोबर के खाद का डाल के खेते में नाली बनाए के दे का चाहिए। खीरा के खेती करे के खातिर हम ही पंचे का जानना बहुत जरूरी होत है कि हम अपने खेते में कितनी मात्रा में बीज लगाई और कौने समय में लगाई जौनी निकही फसल के उत्पादन कई सकी। गर्मी के फसल में जनवरी से मार्च तक करे का चाहिए। बरसात के फसल जून से जुलाई तक आ एक एकड़ के भूमि में कम से कम 2 से 3 किलोग्राम बीज के जरूरत होती। खीरा के पेड़ फैले वाला होते है, ऐसे अच्छे फसल के खातिर बुवाई समय इनके बीज के आपस के दूरी 50 से 100 सेंटीमीटर हो का चाहिए। बीज बोवत समय यह जाना बहुत जरूरी होवा करत है कि बीज का बोवत समय बीज 1 सेंटीमीटर के गहराई में बोमे का चाहिए। खीरा के खेती में जो अपना जैविक खाद के उपयोग करी थे तो खीरा अच्छी उपज दे सकत है। एक ही खातिर खेते के आखिरी जुताई में 200 से 300 कुंटल सड़ी गोबर का अच्छे से मिलाए के साथ है साथ 40 से 50 किलोग्राम नत्रजन, 70 किलोग्राम पोटास, 60 किलोग्राम फास्फोरस ये सब तत्वों का खेत तैयारी करत समय डाल के फसल तैयार कर सकी थी। और जब खेत तैयार हो जाए तो ठीक 20 से 25 दिन बाद माइक्रोझाइम 500 ml और 2 किलोग्राम सुपर गोल्ड डालने का चाहिए। किसान भैलो, इस सब विधिन का अपनाए के अगर हम पंचे खीरा के खेती करब तो हम ही पंचे का खीरा के खेती के अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो हम पंचे यह विधि से खीरा के खेती करी और अधिक से अधिक लाभ ले।
0: खीरे की उन्नत खेती, इस विषय पर अभी आप जानकारी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि संकेत में। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, गायक स्वर सुरेश वाडकर का था। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज सवेरे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:30 पर सुनिएगा संग्रहालय से नाटक जंगल जंगल। लेखक हैं योगेश त्रिपाठी, प्रस्तुति महेश बाबू सक्सेना की होगी। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे रूपक बुझती सरिताएं। प्रस्तुति सहयोग है सागर सिंह का, वाचन स्वर रुचि सिंह बघेल का और आलेख डॉक्टर नौशाद अली अंसारी का है। सुबह 10:05 पर सुनेगा सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे जश्न कव्वाली। चौपाल का समय होगा 7:21 पर। इसमें आप सुनेंगे नियमित चर्चा के अलावा कुछ लोकगीत और अपना चौका।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज सुबह 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे रूपक बुझती सरिताएं। प्रस्तुति सहयोग है सागर सिंह का, वाचन स्वर रुचि सिंह बघेल का और आलेख है डॉक्टर नौशाद अली अंसारी का। इसके अलावा सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे संग्रहालय से नाटक जंगल जंगल, लेखक हैं योगेश त्रिपाठी, प्रस्तुति महेश बाबू सक्सेना की होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:00

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जनाब कहते हैं कि सुबह का पहला विचार पूरे दिन का रंग तय करता है, इसलिए आज अपने मन में एक पॉजिटिव थॉट जगाइए, किसी का धन्यवाद कीजिए, किसी को मुस्कान दीजिए और अपने आप से ये वादा कीजिए कि चाहे जो भी हो आज का दिन खुशियों के नाम रहेगा, क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि हर दिन तय किया जाने वाला एक रास्ता है। 7:11 और 33 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

0: पाऊंगा।
1: ये फोरम मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये फोरम भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने तथा मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है।

0: अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा,
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: इंदौर में 9 जून से प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन की कृषि विभाग के सचिव निशांत वरमड़े इंदौर पहुंचे और आयोजन से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री वरमड़े ने होटल शेरिटन, मैरिट होटल और ग्रामीण हाट बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल संचालन के प्रथम चरण के कार्य पूरा होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों के कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र इंदौर में मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। दोनों नगरों की मेट्रो रेल परियोजना के सभी चरणों के संपूर्ण कार्यों में तेजी से पूरा किया जा रहा है। समग्र प्रगति की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं के 2/3 कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। इन सीटों के लिए नामांकन जमा करने की तिथि 8 जून है। जरूरी हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल लोकभवन में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष विभाग के साथ चर्चा करते हुए विश्व सिकल सेल दिवस के तारतम्य में सिकल सेल उन्मूलन गतिविधियों को सघनता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उक्त पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए दिए जाएंगे। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल 8,317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इन सभी आवेदनों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। आगर मालवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इंदौर में शासकीय सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में खुड़ैल तहसील के ग्राम गारी पिपलिया में देव धर्मराज मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सिंगरौली कलेक्टर की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पंचायत विभाग और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत प्रभा। श्रोताओं, आज है 5 जून और आज हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम सभी प्रकृति प्रेमी बने, वृक्षारोपण करें और पेड़ों का संरक्षण भी करें, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगी और आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं। इसलिए अपने जीवन में ये ज़रूर उद्देश्य बनाइए कि हमें कम से कम 2 पेड़ लगाना है और उसका संरक्षण भी करना है। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: हिमालय की गोद में आप सुन रहे हैं। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथी की आवाज में। इस गीत का संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत प्रभा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 7:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

अजीब दास्तां है ये अपने पेड़ पौधे फूल पत्तियों को काट कर छांट कर नोच कर फेंक कर बड़ी बड़ी इमारतों से प्रकृति को दरकिनार कर विकास की सीढ़ियों पर जोरों शोरों से आगे बढ़कर तुम दूर देश दूर दराज पहाड़ों पर जाते हो सिर्फ एक

0: नदी एक फूल को निहारने, इस प्रकृति में बिखरी असीम शांति को पाने। क्या अजीब दास्तां है जब तुम ही नदियों को नाला बनाकर, कारखानों के कचरों से उनकी शुद्धता छीनकर, उनका कल कल बहता हुआ पानी रोककर, उनकी वास्तविक आकार से उन्हें सकरी बनाकर, काशी की वरुणा प्रयाग की गंगा को मैला कर, कोशी की शुद्धता को ढूंढते हो उत्तराखंड में, अजीब दास्तां है ये। जी हाँ, अक्सर छुट्टियों में हम दूर दराज पहाड़ों पर जाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं, रोजमर्रा के तौर पर जहाँ हम सांस लेते हैं, क्या हम आज उस वातावरण को सुरक्षित रख पाए हैं? तो आज इस सुबह एक निर्णय लें कि आप अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखेंगे, और सिर्फ पहाड़ों को ही नहीं बल्कि अपने आसपास की जगहों को, अपने आसपास के वातावरण में भी हरियाली लाएंगे। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे की सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट वीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार आकर्षिता, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 5th of June 2026.
0: और आइए अब नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: That's right. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasana Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said Ministry of Ayush has launched Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities. The Prime Minister urged athletes from across the world to help spread awareness about yoga beyond the championship.
2: जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
1: The appeal came as Ahmedabad hosted the first World Yogasana Championship, which has attracted more than 400 competitors from over 60 countries. The event is being held from the 4th of June to the 8th of June and is regarded as a landmark effort to develop yogasana as a structured international sport. Akarshita, aap bhi yoga karte hain?
0: जी, मैं करती हूँ और अभी छोड़ दिया है, पर पहले ज्यादा करती थी।
1: जी, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे को कुछ एक दो साल पहले कुछ आंखों की प्रॉब्लम हो गई थी। ऑब्वियसली विद एडवांसिंग एज,
0: विद टाइम,
1: तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि चश्मा पहनना पड़ेगा। तो मैं ठीक है, मैं वापस घर आया तो मुझे फिर मेरे एक फ्रेंड मिले, उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग योगा। फिर मैंने योगा करना शुरू किया एंड शीर्षासन से मेरा जो आई पावर है वापस सही हो गया और अब मुझे स्पेक्स की जरूरत नहीं है।
0: वाओ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ योगा कि आपको एक तरीके से मेंटली भी वो बहुत ज्यादा जो आप प्रेशर फील करते हैं आजकल के टाइम में भागा दौड़ में, वो उससे भी एक निजात पाते हैं आप, और कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को भी बहुत बेनिफिट करता है।
1: तो आई थिंक योगासना जो इंडिया की देन है, आई थिंक द वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड इट एंड ऑल ओवर द कंट्री, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं सिंगापुर गया था, वहां पे भी लोग काफी योगा करते हैं। But the thing is that Indians, I think, कम करते हैं, बाहर के लोग ज्यादा करते हैं।
0: They do not know the importance, पर right now मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी इसको काफी प्रमोट कर रहे हैं और अब लोग भी इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं।
1: Exactly.
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है।
1: फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुभाष सी कश्यप passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. He was 97. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ram Nath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as the Secretary-General of Lok Sabha from 1983 to 1990. Vice President C.P. Radhakrishnan has expressed grief at the passing away of Dr. Kashyap. In a social media post, Ms. Radhakrishnan said that Dr. Kashyap made invaluable contributions to the understanding of India's constitution and parliamentary democracy through his scholarship, writings and public service. In his condolence message, Prime Minister Modi said that Dr. Kashyap was one of India's foremost constitutional scholars whose contributions to parliamentary and constitutional discourse enrich the society.
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। और प्रमोद, जैसा कि हमने शुरुआत ही की पर्यावरण पे किस तरीके से हम उसको संरक्षित कर सकते हैं, जैसा कि हमने बात की कि हम जो है अक्सर छुट्टियों में घूमने निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और बोलते हैं कि पहाड़ों पर जो है अपना जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहां हम रहते हैं 90% ऑफ द टाइम, जहां पे हम, मान लीजिए मैं दिल्ली की हूं और मैं उत्तराखंड घूमने जा रही हूं, तो हम अपने वातावरण को सुरक्षित नहीं रख पाते। हम वहां पे हरियाली जो है नहीं मेंटेन कर पाते और अपने आसपास की जो चारों तरफ जो है हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको नहीं संरक्षित कर पाते, तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने को छोड़ करके किसी दूसरी चीज को पकड़ रहे हैं एक तरीके से कहा जाए। बल्कि हमारे आसपास भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम संरक्षित कर सकते हैं। हमारे आसपास में दिल्ली में ही आप देखिए संजय वन है और बहुत ढेर सारे ऐसे इन्वायरमेंटल आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आसपास भी हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए।
1: एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैंने ये शुरू किया है मेरे ही कॉलोनी में, वेयर आई स्टे इन गुड़गांव। मेरे बच्चे और उनके फ्रेंड्स, वी हैव मेड इट अ पॉइंट कि हम एवरी वीक एक हम पौधा
0: लगाएंगे,
1: पेड़ प्लांट करेंगे, विच इज वेरी गुड।
0: और एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री का अभियान जो रहा वो भी काफी सराहनीय रहा और लोगों ने जो है लगाया। और हमने कई बार सुना कि कई गांव में जब बच्चियां होती थी तो वो पेड़ लगाते थे। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं अपने जन्मदिन पर या किसी और को तोहफे में।
1: केरला, तो जब मैं जाता था केरला इन गर्मी की छुट्टियों में, तो माय नानी यूज्ड टू ऑलवेज टेल ऑल द ग्रैंडचिल्ड्रन कि यू हैव टू प्लांट एटलीस्ट वन ट्री। तो हम जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, वी यूज्ड टू प्लांट वन मैंगो ट्री और वन जैकफ्रूट ट्री, कटहल जिसे बोलते हैं आप, एंड नेक्स्ट डे वी वुड गो एंड सी, अरे वो पेड़ इतना लंबा हो गया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग to see that tree growing also, plus it's very good for the environment.
0: Patience also, जब हम उसको देखते हैं तो एक तरीके से पेशेंस भी आता है, धैर्य आता हमारे अंदर। आजकल लोग शिकायत करते हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे तो इतनी स्पेस नहीं है, हम कहाँ पे प्लांट्स लगाएं। तो जैसा कि आपने बात किया कि आप गांव गए, अपनी नानी के यहाँ गए, फिर आपने वहां पे एक प्लांटिंग की, तो जरूरी नहीं कि हमें कुछ ना कुछ, हम कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेते हैं कि अरे ये है नहीं तो हम कैसे लगाएं। आप अगर देखें तो आप एक छोटे से जो है बॉटल में भी, जो एक प्लास्टिक का बॉटल है, छोटा सा पौधा लगा सकते हैं।
1: इनफैक्ट हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बिमल दाम बुलाता मैं उनको, बिमल मोहपात्रा हमारे एडिटर भी हैं यहाँ पे, उनका किचन गार्डन है, उनका टेरेस गार्डन है बहुत ही बढ़िया सा, एंड आई एम रियली अमेज्ड जो वो क्या क्या उसमें उगाते हैं।
0: तो वही हम देख सकते हैं कि अगर
1: जहाँ पे चाह है
0: वहाँ राह है,
1: बस दैट्स इट। इसी बात पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स टू द सिटीजंस ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट डॉक्टर जयशंकर सेड दैट इंडिया रिमेन्स स्टेडफास्ट इन एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन एंड एनकरेजिंग एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल्स through initiatives such as Mission Life, International Solar Alliance, Global Biofuels Alliance and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. He encouraged everyone to work towards a greener, cleaner and more sustainable future.
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
1: Russian President Vladimir Putin has hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its cooperation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with heads of leading global news agencies, Putin lauded India's economic growth and its independent foreign policy and said Russia is determined to expand its economic engagement with the country. He said that India's economic growth is the result of the hard work that the government of India has been doing under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The Russian president said that India's diplomatic engagement with the United States does not hinder or undermine its time-tested relationship with Russia. He said Russia considers India as a reliable partner and it sees no negative consequences from New Delhi's bilateral relations with any other country. He said that India is a great nation and democracy and Russia will continue to expand its relations with it. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IAS officer, as advisor to the Prime Minister. The Department of Personnel and Training informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on the 10th of this month for a further period of 1 year.
0: आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई की खबरों के साथ हैं प्रमोद।
1: That's right, Akarshita. A long-time important member of the India bloc has announced that it will no longer be a part of it. The DMK party spokesman TKS Elangovan has said that the party would not be attending the alliance meeting to be held in Delhi on the 8th of June. The state sports minister Adav Arjun has appealed to the union government to permit Tamil Nadu to host the 2029 national games. He met the union minister for youth affairs and sports Dr. Mansukh Mandavia in Delhi and submitted a memorandum highlighting the state's track record of hosting major national and international events. He said that the state has 1,076 kilometer long coastline, making it suitable for setting up a national center for excellence for beach sports in Nagapattinam district, which is known for its unique coastal landscape and availability of local talent. He also requested for setting up of an international standard indoor cycling velodrome and a national cycling high performance center in Coimbatore and urged center to expand the Khelo India ecosystem by setting up centers across the state such that at least two priority sports disciplines are covered in every single district.
0: और आइए अब जानते हैं दिल्ली की खबरें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर आयोजित कांवड़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया समय से शुरू की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पंजीकरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू करने की दिशा में सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी समितियों को आवश्यक दस्तावेजों और वार्षिक ऑडिट संबंधी औपचारिकताओं की जानकारी समय रहते उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न आए। साथ ही श्रद्धालुओं को 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर बल देने और बैंक खातों में ट्रांसफर करने तथा सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल साकेत के मैक्स हॉस्पिटल का दौरा किया और मालवीय नगर में आग लगने की दुखद घटना में कल घायल हुए लोगों से भेंट की। उन्होंने घायलों और उनके परिवार वालों से बातचीत की और इलाज कर रहे डॉक्टरों से इलाज की समीक्षा भी ली। साथ ही अधिकारियों को सभी जरूरी मदद देने का निर्देश भी दिया। वहीं आईआईटी दिल्ली जेईई एडवांस्ड 2026 में पात्र होने वाले छात्रों के लिए आज से भारत के 3 शहरों में एक ओपन हाउस का आयोजन करेगी। इस 3 दिन सत्र का आयोजन दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में किया जाएगा। इस ओपन हाउस में छात्रों को आईआईटी दिल्ली के छात्रों, फैकल्टी और पूर्व छात्रों से बातचीत करने का मौका मिलेगा।
1: Moving on to Bangalore, the Bangalore Water Supply and Sewerage Board is working on making Bengaluru City a globally recognized hub for water innovation, urban water security and sustainable infrastructure development. It wants to establish Bengaluru Global Water Innovation Network, a global collaboration platform to bring together leading water utilities, government agencies, universities, research institutions, industry leaders, startups, incubators, investors and civil society organizations to collectively address emerging challenges in the water and wastewater sector. Bengaluru Global Water Innovation Network wants to foster innovation, accelerate technology adoption, promote international collaboration and build a future-ready ecosystem capable of addressing the growing challenges posed by rapid urbanization, climate change and resource scarcity.
0: और अब जानते हैं मुंबई से खबरें। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा फिर से सुन लें। महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों के नाम कल वापस लेने के बाद भाजपा की एक और एनसीपी और शिवसेना के 2-2 सहित 5 महायुति गठबंधन उम्मीदवारों की जीत का रास्ता साफ हो गया है। शेष 12 सीटों पर चुनाव 18 जून को होंगे और मतगणना 22 जून को होगी। वहीं इतिहास में सबसे अधिक मासिक आगंतुकों की संख्या दर्ज करते हुए राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय ने मई 2026 में 17,000 से अधिक आगंतुकों का स्वागत किया है। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये उपलब्धि संग्रहालय द्वारा सभी आयु वर्ग के दर्शकों को जोड़ने के निरंतर प्रयासों का परिणाम है।
1: Moving on to Hyderabad, Telangana Governor Shiv Pratap Shukla called upon central and state public sector undertakings to support the modernization and expansion of Salar Jung Museum. The governor, who is chairman of the museum, chaired a meeting with PSU representatives at Lok Bhavan on Thursday. The museum will celebrate its platinum jubilee from this year, from June 14 to June 21st. The governor said the celebrations will feature special exhibitions, cultural programs, educational initiatives, publications and public engagement events. He emphasized the need to develop the museum into a modern institution of international standards over the next 5 years. The governor appealed to PSUs to contribute through their corporate social responsibility programs towards the museum's development.
0: और आइए अब जानते हैं कोलकाता से खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा परियोजना को आधिकारिक तौर पर अपना लिया है, जिससे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाली देश की 33वीं विधानसभा बन गई है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को संसद भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। और प्रमोद, जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली में आजकल मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है हल्की हल्की और थोड़ा सा तूफान वाला मौसम है, लेकिन कुल मिला के हमारे लिए तो काफी अच्छा मौसम है।
1: करेक्ट। मेरे बच्चों ने बोला कि भगवान ने खुद ही एसी कर दिया, कल इतनी अच्छी बारिश हुई। हाँ एग्जैक्टली, गुड़गांव में कल काफी बारिश हुई है
0: जी। तो अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आंधी तूफान आने और हल्की बारिश होने की संभावना है, तो आप भी एंजॉय कर सकते हैं
1: जी।
0: आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आज आसमान आंशिक रूप से, वहां पे बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना है। कोलकाता में आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहेगा। तो प्रमोद, कुल मिलाकर हर जगह मानसून का जो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है प्रभाव।
1: एग्जैक्टली, इनफैक्ट मानसून्स जो मई 26 को हिट करने वाले थे केरला, वो अभी हिट कर गए हैं और सुना अच्छी बारिश हो रही है केरला में। And Chennai is expected to have heavy rainfall. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and the maximum will be around 39 degrees. Bengaluru is expected to have thunderstorm accompanied with lightning. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have thunderstorm accompanied with lightning. The temperature will hover between a minimum of 28 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius.
0: और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या खास हुआ। आज के दिन ही 1981 में अमेरिकी संस्था CDC ने एड्स बीमारी पर पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रकाशित की।

0: Country.
1: And in 1967, on this day, the 5th of June, the Six-Day War began in the Middle East as Israel launched preemptive strikes following troop movements by Egypt, Jordan and Syria.
0: और आज के दिन ही 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में दाखिल हुई थी, ये शुरू हुआ था.
1: And in 1944, Allied forces dropped over 5,000 tons of bombs on German gun batteries on the Normandy coast, setting the stage for the D-Day invasion.
0: और आज के दिन ही 2005 में ताइवान ने अपनी पहली क्रूज में मिसाइल का सफल परीक्षण किया था.
1: And in 1968, U.S. Senator Robert F. Kennedy was fatally shot by Sirhan Sirhan at Ambassador Hotel in Los Angeles shortly after his California primary victory speech.
0: और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. पान, घोड़ा और मन तीनों को समय समय पर फेरना चाहिए, अन्यथा वे एक रस होकर सड़ने लगते हैं. आज हिंदी साहित्य की आधुनिक विधा ललित निबंध के क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध लेखक कुबेरनाथ राय की पुण्यतिथि है. उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की है. उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से अधिक निबंध लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे और साहित्य संस्कृति की दुनिया में काम करने वाले लोगों के बीच काफी सराहे गए. कुबेरनाथ राय की अब तक 21 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. कामधेनु निबंध संग्रह पर ज्ञानपीठ की ओर से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण मूर्ति देवी पुरस्कार से भी वे सम्मानित किए जा चुके हैं. उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मराल, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादर, निषाद, बांसुरी आदि.
1: Today is the death anniversary of Stefan Crane, a poet, novelist and short story writer. Prolific throughout his short life, he wrote notable works in the realist tradition as well as early examples of American naturalism and impressionism. Today is also, we also remember Melvin Howard Torme on his death anniversary. He was a musician, singer, composer, arranger, drummer, actor and author. He composed the music for the Christmas song Chestnuts Roasting on an Open Fire and co-wrote the lyrics with Bob Wells. Torme won 2 Grammy Awards and was nominated a total of 14 times. For jazz musical form, often improvisational, it was developed partially from ragtime and blues and is often characterized by syncopated rhythms, polyphonic ensemble playing, varying degrees of improvisation, often deliberate deviations of pitch and the use of original timbres.
0: आज मास्टर मदन की पुण्यतिथि है. वे भारत की आजादी से पहले के एक प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक थे. मास्टर मदन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. मास्टर मदन एक ऐसे कलाकार थे जो 1930 के दशक में एक किशोर के रूप में ख्याति प्राप्त करके मात्र 15 वर्ष की उम्र में 1940 के दशक में ही स्वर्गवासी हो गए. ऐसा माना जाता है कि मास्टर मदन को आकाशवाणी और अनेक रियासतों के दरबार में गाने के लिए ऊंची रकम दी जाती थी. तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में उनका ये गीत.

0: His ideas, reformulated as New Keynesianism, are fundamental to mainstream macroeconomics. He is also known as the father of macroeconomics.
1: आज हिंदी सिनेमा के बहुमुखी अभिनेता विजय राज का जन्मदिन है। विजय ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपने अभिनय के दम पर खास पहचान बनाई। फिल्म रन का मशहूर कौवा बिरयानी सीन उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। ये सुनते हैं ये डायलॉग।
2: मारा गायब है, टाइम ही तो पूछ रहे थे।
3: क्या हुआ भाई?
2: दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं,
3: अच्छा,
2: कौवे का आवाज आ रहा है भाई।
3: क्या खाए थे?
2: वेल आई हैड ए माल लंच।
3: ए भाई, क्या बोल रहे हैं? आई हैड,
2: दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे।
3: 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी?
2: हाँ।
3: भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा।
2: कौवा बिरयानी।
1: आज मलयाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप की जयंती है। उन्होंने कोचीन राज्य की पंडित परीक्षा पास करके अध्यापन की योग्यता प्राप्त की थी। उसके बाद 2 वर्ष तक वे यहां वहां अध्यापन कार्य भी करते रहे। महाकवि गोविंद शंकर कुरूप की 40 से अधिक मौलिक और अनूदित कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी मुख्य रचनाएं हैं साहित्य कौतुकम, विश्व दर्शनम, लेखमाल, जीवन संगीतम, संध्या आदि। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज ही भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता नारायण मल्हार जोशी की जयंती है। उन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और 1929 तक उसके सचिव रहे। कांग्रेस में साम्यवादियों के प्रभाव के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर ट्रेड यूनियन परिसंघ नामक एक नया संगठन बनाया था। वे केंद्रीय विधानसभा दिल्ली के निर्वाचित सदस्य भी रहे थे।
0: Today is the birthday of Mukesh Bhatt, is an Indian film producer and actor who's produced several Bollywood films. He is the younger brother of Mahesh Bhatt and also the co-owner of the production company Vishesh Films, set up in 1986. Bhatt is the son of Rana Bhai Bhatt, a Hindi film director and producer. His father was a Gujarati Brahmin and mother a Gujarati Muslim. Rana Bhai's brother Balwant Bhatt was also a Hindi film director. And in fact, Bhatt has one daughter named Sakshi and a son named Vishesh, who has, in fact, Vishesh Films is named after him. For 30 years, Mukesh, along with his brother Mahesh, produced movies under the banner of Vishesh Films. And of course, he's made a lot of films, and his popular films were Jurm, Sir, and Dil Hai Ke Mantani, and we have a medley. Let's listen to that.

0: सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर।
1: That's right, stay tuned for coming up next a समाचार प्रभात, a Hindi news bulletin followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar.
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: घर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
7: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
7: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे। और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ज्ञान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारे जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भौसल।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के

0: के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap forces away in New Delhi.

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को कोलकाता में हुआ था। जब वह मात्र 3 वर्ष की थी तब उनका परिवार ढाका चला गया था, क्योंकि उनके पिता बैंक में कार्यरत थे और वहां कई सालों तक वो रहे। और सन 1943 में उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया, जहां सुमन कल्याणपुर ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। उनके बारे में बातें आगे भी करेंगे और साथ ही आपको उनके गाए हुए कुछ एकल और युगल गीत सुनवाती रहेंगे। तो लीजिए, सुनिए उनका गाया एक और गीत।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर जी को चित्रकला और संगीत दोनों में ही बेहद गहरी रुचि थी। उन्होंने पंडित केशवराव भोले से शास्त्रीय गायन सीखना शुरू किया था। सुमन कल्याणपुर के अनुसार शुरुआत में उनका गायन का शौक मात्र था, लेकिन धीरे धीरे संगीत में उनकी रुचि बढ़ती गई और उन्होंने उस्ताद अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग से संगीत सीखना शुरू किया। सुमन कल्याणपुर की छोटी बहन श्यामा भी एक गायिका थी, तो आइए हम आपको सुनवाते हैं उनका गाया एक और गीत।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर जी का पहला फिल्मी गीत तलत महमूद के साथ फिल्म दरवाजा में था, जो 1954 में आई थी। यह एक युगल गीत था। तलत महमूद ने एक संगीत कार्यक्रम में कल्याणपुर जी को गाते हुए सुना था और उनकी गायकी से बेहद प्रभावित हुए थे। एक नवोदित कलाकार होने के बावजूद उनके करियर को तब बड़ी सफलता मिली जब तलत महमूद ने उनके साथ युगल गीत गाया। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म उनका गाया ये बेहद लोकप्रिय गीत।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर जी ने शंकर जयकिशन, रोशन, मदन मोहन, एस डी बर्मन, एन दत्ता, हेमंत कुमार, चित्रगुप्त नौशाद और एसन त्रिपाठी, गुलाम मोहम्मद, कल्याण जी, आनंद जी, वसंत देसाई, रवि, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। आइए हम आपको सुनवाते हैं इनका गाया एक और गीत।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर फिल्मी और गैर फिल्मी लगभग 700 से अधिक गीतों को गाया है। फिल्मों में उनके अधिकतर युगल गीत होते थे। मोहम्मद रफ़ी के साथ 1960 के दशक में उन्होंने सबसे ज़्यादा युगल गीत गाए। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के आवाज़ में ये गीत।

आइए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी और ख्वाब फिल्म से, और इस गीत को गाया है सुमन कल्याणपुर जी के साथ मन्ना डे ने।

श्रोताओं, अभी आपने ये गीत मन्ना डे के साथ युगल गीत सुना। मन्ना डे के अलावा उन्होंने मुकेश जी के साथ भी बेहद मधुर गीत गाए थे, जिनमें से एक बेहद ही लोकप्रिय गीत है मेरा प्यार भी तो। आइए हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ लता मंगेशकर जी से हूबहू मिलती थी। लोगों को उनके गीत सुनकर भ्रम भी हो जाता था कि ये

लता जी की आवाज़ है, जबकि वो आवाज़ होती थी सुमन कल्याणपुर जी की। हम आपको बता दें कि लता जी का बेहद खूबसूरत सा गीत रहे ना रहे हम महका करेंगे, इस गीत में चंद लाइनें सुमन कल्याणपुर जी ने भी उनके साथ गुनगुनाया है। आइए हम आपको सुनवा रहे हैं ये अगला गीत, जो कि आज भी बेहद लोकप्रिय है और इस गीत को सुनकर निश्चित रूप से झूमने का मन करता है। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं सुमन कल्याणपुर जी का ये युगल गीत, जो गीत को उन्होंने गाया है मोहम्मद रफ़ी जी के साथ।

श्रोताओं, सुमन जी ने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, उड़िया, मराठी, असमिया, गुजराती भाषा में भी सैकड़ों गीत गाए हैं। हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय गीत के लिए उन्हें प्रतिष्ठित सुर श्रृंगार संसद पुरस्कार 3 बार प्रदान किया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2009 में उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए हम आपको सुनवाते हैं उनका गाया ये गीत, और ये गीत हमने लिया है फिल्म पालकी से, जिसे संगीतबद्ध किया है नौशाद ने और शब्द रचना है शकील बदायूं ने की, और इस गीत में भी उनका साथ दिया है मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, 26 जनवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा सुमन कल्याणपुर जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो अपने गीतों की रिकॉर्डिंग सुनती थीं। तो आइए सुनवाते हैं उनका गाया ये बेहद प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 50-60 के दौर में संगीत को सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं माना जाता था और ख़ास तौर से फिल्मों में गाना तो बेहद ही बुरा समझा जाता था। इसलिए उस दौर में बहुत सुरीले फनकार अपनी कला का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए, ना ही पेश कर पाए। सुमन जी के परिवार में भी सार्वजनिक प्रदर्शन करने की सख्त मनाही थी, लेकिन 1952 में जब रेडियो से गाने का उन्हें प्रस्ताव आया, तब उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकराया नहीं, स्वीकार किया और यहाँ से शुरुआत हुई उनकी संगीत की जर्नी की। आइए सुनवाते हैं उनका गाया एक और गीत।

श्रोताओं, अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले आशा भोसले इस दुनिया को अलविदा कह गईं और अब सुमन कल्याणपुर। इस तरह ये कलाकार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके गाए गीत सदियों तक हमें आनंदित करते रहेंगे। आइए कार्य

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे सुमन कल्याणपुर के गाए गीत और उनके साथ साथी कलाकारों के गीत। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। लीजिए सुनिए संग्रहालय से नाटक जंगल जंगल। लेखक हैं योगेश त्रिपाठी, प्रस्तुति महेश बाबू सक्सेना की है।
1: रहा है पंछी मन का बोल रहा है, पेट की आग बुझाने को अन्न का दाना ढूंढ रहा है। जंगल जंगल
2: कितनी गर्मी बढ़ गई है। मैं इतना सुंदर पक्षी तोता गर्मी से बेहाल हूं। समझ में नहीं आता कि हम परिंदों का क्या होगा। खाने को एक दाना नहीं, पीने को एक बूंद पानी नहीं।
3: आ गए तोताराम, अब बताओ कि खाने के लिए कुछ लाए भी हो कि बस तफरी करके लौट आए। जल्दी से निकालो, मुझे जम के भूख लगी है।
2: मैना, मेरी प्यारी मैना, खाने को कुछ नहीं मिला मुझे।
3: क्या कहा, कुछ नहीं मिला? हाय हाय, मैं बर्बाद हो गई, लूट गई। कितना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। अरे तोते, जब तू मेरा पेट नहीं भर सकता था तो ब्याह क्यों किया मुए?
2: अरे तू चुप तो कर, जब नहीं तब शोर मचाने लगती है। ये ले देख, क्या है ये?
3: लकड़ी? तू लकड़ी ले आया खाने के लिए?
2: अरे पेड़ की छाल है।
3: तो क्या मैं पेड़ की छाल खाऊंगी?
2: अरे इसके अंदर तो देखना, समझ?
3: कहाँ?
2: अरे इस छाल के अंदर देख तो, क्या फंसा है?
3: चने का एक दाना?
2: अरे बड़ी मुश्किल से मिला है।
3: लेकिन इस एक दाने से क्या होगा? कितना तुम खाओगे, कितना मैं खाऊंगी?
2: अरे क्या करूं मेरी प्यारी, सारे खेत खलिहान सूखे पड़े। अकाल ऐसे जोरों का पड़ा है कि किसान तो किसान, हम पक्षियों तक की दुर्गति है। एक एक दाने को सब तरस रहे हैं।
3: अच्छा तो ऐसे कब तक चलेगा? सुनो जी, चलो किसी दूसरी जगह चलें।
2: दूसरी जगह? अपना ये घर बार छोड़ के?
3: पेड़ के खोथे में रहते हो, किसी महल में नहीं। कहीं दूसरा खोथा ढूंढो, वहीं चलते हैं। नहीं तो
2: नहीं तो
3: मैं दूसरे के खोथे में बैठ जाऊंगी। हाँ
2: क्या,
3: मुझे ऐसा तोता नहीं चाहिए जो अपनी मैना का पेट तक ना भर सके।
2: कौन कहता है, कौन कहता है कि मैं अपनी मैना का पेट नहीं भर सकता? ये ले पूरा खा ले।
3: वाह वाह वाह, इतना बड़ा त्याग।
2: त्याग नहीं रे,
3: तब क्या है?
2: प्यार है।
3: अरे
2: सच कहता हूँ मैना, इस एक दाने के सिवा कुछ नहीं मिला मुझे। तू खा ले, तेरा पेट भर जाएगा तो मुझे भी संतोष होगा। मैं अपने लिए कुछ और ढूंढता हूँ, तू खा ले, तुझे मेरी कसम।
3: हाय दैया, तूने कसम दे दी?
2: हाँ।
3: तो फिर मेरी भी कसम सुन ले, आधा आधा खा, जो भी रूखा

0: मिलेगा, आधा आधा खाएंगे, फेरे पड़ते से मैं कसम लिया था। हाँ
1: अच्छा ठीक है, तू शुरू से ही जिद्दी रही है, दाने को पहले निकाल तो लूं। अरे ये दाना तो निकल ही नहीं रहा है।
0: तेरी चोंच कमजोर हो गई है, और जोर से निकालना।
1: तू ठहर, तू लकड़ी को पकड़, मैं दाने को पकड़ता हूँ।
0: अच्छा ठीक है,
1: और फिर जोर से खींचता हूँ। अरे
0: क्या हुआ,
1: एक दाल तो निकल आई पर दूसरी दाल फंसी ही रह गई।
0: अरे अब क्या होगा।
1: तू ऐसा कर, ये दाल तू खा ले, दूसरी दाल मैं छाल से निकलवा कर आता हूँ।
0: किससे निकलवाएगा।
1: अरे ललन से, लकड़ी का काम वही तो करता है, यही पास में ही तो है, तू ये दाल खा ले।
0: ठीक है खा लेती हूँ, पर तू जल्दी आना।
1: हाँ हाँ मैं जल्दी आऊंगा। ये लो मैं आ गया लल्लन की दुकान पे, वो काम में भी लगा हुआ है, मेरी दाल तो बस निकली ही समझो। कहता हूँ कुट कुट कुट कुट, लल्लन लल्लन, ए लल्लन।
2: ओ क्या है तोते।
1: लल्लन लल्लन ये छाल चीर दो।
2: छाल चीर दूँ।
1: हाँ छाल में एक दाल है, अब बताओ क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेकर परदेश जाऊं।
2: पैसे हैं तेरे पास।
1: ए? पैसे पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम राज कर्मचारी हो ना।
2: हाँ हूं तो।
1: तुम्हें प्रजा का काम करने के लिए राजा से वेतन मिलता है ना, तो फिर हमसे पैसे क्यों मांगते हो।
2: तू तोता हमसे जवाब तलब करता है, भाता है कि दूं एक सक्कनी।
1: ए?
2: चल भाग, दाल निकाल दूं, पंछी भी हुकुम झाड़ने लगे।
1: अब क्या करूं, लल्लन तो बहुत बेईमान निकला, रिश्वत खोर निकला, ये उसी का काम करता है जो इसे पैसे दे, मेरे पास पैसे नहीं तो डांट कर भगा दिया, ये तो बहुत गलत बात है, मर जाए दुष्ट, इसको दंड मिलना चाहिए, भले मैं 4 दिन भूखा रहूं, इसको दंड दिलवा कर रहूंगा। जाता हूं राजा के पास, वो जब जानेंगे ना खाल उतरवा लेंगे इसकी। राजा के महल में मैं आ गया, लगता है यही है राजा, जाकर कहता हूं कुट कुट कुट कुट, मैंने कहा राजा जी।
3: अरे ये तोता कहां से आया।
1: राजा जी तुम लल्लन को मार दो।
3: लल्लन को मार दूं, कौन लल्लन।
1: अरे वही जो लकड़ी का काम करता है।
3: अच्छा क्या किया है लल्लन ने।
1: लल्लन ने छाल नहीं चीरी, छाल में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेश जाऊं, और मालूम वो मुझसे पैसे भी मांग रहा था।
3: लल्लन ने छाल नहीं चीरी तो मैं उसे मार डालूं। चल भाग यहां से।
1: नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम उसे मारोगे नहीं मैं यहां से नहीं हटूंगा।
3: अरे भाग, नहीं तो कच्चा चबा जाऊंगा। क्या तमाशा है, परिंदे भी थैला देने लगे। चल भाग, जानता नहीं रानी साहिबा आ रही हैं। अभी तो मुझे स्नान करना है, उसके बाद सुगंध आदि लगाकर उनके लिए तैयार होना है।
1: ये राजा तो बहुत अन्याय निकला, इसे प्रजा के कष्ट को दूर करना चाहिए कि रानी के साथ ठिठोली करना चाहिए, और कितना विलासी है, जरूर रानी को भी धोखा देगा। अभी जाता हूँ रानी के पास, उससे कहता हूँ इसे वो छोड़ दे, हाँ इसी में उसकी भलाई है। ये रहा रानी का महल। ए? ये क्या, रानी भी सिंगार करने में मस्त है। हाँ हाँ क्यों नहीं, राजा के पास जाने वाली है ना, लेकिन अब जब मैं राजा की

0: असलियत इसे बताऊंगा तब ये कैसे जाएगी। कहता हूँ कुट कुट कुट कुट, रानी रानी।
1: अरे ये मिट्टू तो बहुत प्यारा है, क्या है मिट्टू?
0: रानी रानी एक बात कहूँ?
1: हाँ कहो ना।
0: तुम राजा को छोड़ दो।
1: हाँ राजा को छोड़ दूँ? भला क्यों?
0: राजा अन्यायी है, विलासी है। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी ना वो दूसरे से प्रेम करेगा, देख लेना।
1: मैं बूढ़ी होऊंगी तब ना। तू बता तू राजा पर इतना नाराज क्यों है?
0: रानी रानी राजा ने लल्लन को दंड नहीं दिया।
1: कौन लल्लन और किस बात का दंड?
0: अरे वही लल्लन जो लकड़ी का काम करता है, उसने छाल से मेरी दाल नहीं निकाली ना।
1: देखूं तो
0: राजा के पास गया तो राजा ने मना कर दिया, वो तुमसे मिलने के लिए ज्यादा बेचैन था। रानी राजा अच्छा आदमी नहीं है। हाँ तुम उसे छोड़ दो।
1: अरे पागल, राजा अच्छा आदमी हो या बुरा मुझे क्या, राजा राजा होता है ना, और जो राजा है मैं उसी की हूँ, नहीं समझे? भाग जा नहीं तो गर्दन मरोड़ दूंगी।

ये रानी तो और भी दुष्ट निकली। इसको मेरा दर्द नहीं समझ में आता, मेरी गर्दन मोड़ने को कहती। अरे ये तो रानी होने के लायक ही नहीं। अरे रानी क्या इस धरती पर जिंदा रहने लायक नहीं? मैं भी जाता हूं नागराज के पास, इसको नागराज से डसवा कर रहूंगा। चलूं देखूं कहां है।

0: क्या मस्त सांप है, बोलता कुट कुट कुट कुट, नागराज नागराज।
1: क्या है?
0: नाचना बंद करो तो मैं एक बात बताऊं।
1: ये ले, बता क्यों आ गया सुबह सुबह?
0: नागराज देवता,
1: चापलूसी नहीं, काम बताओ, मुझे जल्दी है।
0: मुझे भी जल्दी है, चलो रानी को डस लो।
1: रानी को डस लूं? मगर क्यों?
0: लंबी कहानी है।
1: तो फिर बाद में आना।
0: नहीं नहीं, जल्दी से बताता हूँ, सुनो। वो ऐसा हुआ, अरे अरे तुम इतना हंस क्यों रहे हो?
1: तेरी मूर्खता पर।
0: क्यों?
1: तेरा काम लल्लन से था, लल्लन ने मना कर दिया, तू राजा के पास गया, राजा ने मना कर दिया, फिर तू रानी के पास गया, तो रानी ने भी मना कर दिया, तो अब तू मेरे पास आया है कि मैं चलूं और रानी को डस लूं।
0: हाँ सच है।
1: तो क्या मैं पागल हूँ कि तुझे जैसे पंछी के कहने पर रानी को डस लूं? सबने मना कर दिया तो मैं क्यों करूं? और तू मेरे किस काम का है? तू क्या मेरे भोजन का इंतजाम करता है? बोल।
0: नहीं, मैं तो अपने ही भोजन के लिए परेशान हूँ।
1: फिर मैं तेरी मदद क्यों करूं?
0: तो क्या रानी तुम्हारे भोजन का इंतजाम करती है?
1: करे ना करे, रानी रानी है, इस पूरे राज्य की मालकिन है, और कितनी सुंदर है वो, मुझे तो जब भी मौका मिलता है छुप

0: मेरे किस काम का है? तू क्या मेरे भोजन का इंतजाम करता है? बोल।
1: नहीं, मैं तो अपने ही भोजन के लिए परेशान हूँ।
0: फिर मैं तेरी मदद क्यों करूं?
1: तो क्या रानी तुम्हारे भोजन का इंतजाम करती है?
0: करे ना करे, रानी रानी है, इस पूरे राज्य की मालकिन है। और कितनी सुंदर है वो, मुझे तो जब भी मौका मिलता है

0: मारने आए
1: क्या मारने आए हैं? अरे छिमा महाराज छिमा, हमने अपने से कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया हमने अपने से।
0: अरे यही तो तकलीफ है कि तुमने कुछ नहीं किया।
1: किया है मालिक, किया है।
0: कहाँ किया है?
2: तुमने हमारा काम क्यों नहीं किया था?
1: तू होता कौन सा काम?
2: इस छाल से ये दाल का टुकड़ा क्यों नहीं निकाला था तुमने?
1: दाल का टुकड़ा? लेकिन महाराज इसका उससे क्या संबंध है?
0: अरे इसका उसका मत कर ललन, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये देख मेरी तलवार अब उठ चुकी है।
1: महाराज महाराज दाल मैं निकाले देता हूँ, ये लीजिए निकाल आई। अब तो क्षमा कर देंगे ना महाराज?
0: अरे कैसे क्षमा कर देंगे, रानी ने कहा है अब तो हम तुमको मार कर ही जाएंगे।
1: महारानी ने कहा है? महाराज ये तोता भाई अब तुम ही कुछ कहो।
2: महाराज रानी ने हमारे ही काम के लिए ना आपसे कहा था।
0: हाँ तो?
2: तो लल्लन तो आपके कर्मचारी जैसा ही है ना महाराज, कर्मचारी काम करने लगे यही तो राजा को चाहिए।
0: मतलब न मारे?
2: जरूरत ही क्या है महाराज। हाँ इसको इतना जरूर कह दीजिए कि कभी किसी के काम को मना ना करे, चाहे जितना भी गरीब हो, और हाँ कभी किसी से पैसे भी ना मांगे।
3: बोल ललन क्या कहता है?
1: क्या कहूँगा माता जी, अरे यही कहूँगा कि अब आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।
0: तो फिर ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसी गलती की तो?
1: अरे कभी नहीं करूँगा अन्नदाता, कभी नहीं करूँगा।
0: तो चलूँ तोते, इजाजत है अब।
2: कहाँ जाएंगे महाराज?
0: अरे जाएंगे अपनी रानी के पास, और कहाँ।
2: मूर्ख राजा।
3: चारों तरफ त्राही त्राही मची है और तुम रास रंग में डूबे हो।
2: अरे तुम एक राजा हो, राजा के लिए संवेदना होनी चाहिए तुम में, अगर वो नहीं तो तुम राजा के पात्र नहीं सजा के पात्र हो।
0: समझ गया मैं, अच्छी तरह समझ गया, तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, धन्यवाद। मैं जाकर अपने काम में लगता हूँ।
1: ये लो तोते, संभालो अपनी दाल।
2: दाल, इस दाल के लिए मैंने कितनी मेहनत की, कितने दिनों से मैं भूखा रहा, धाने का एक कण तक पेट में नहीं गया।
3: तू अब खा लेना।
2: नहीं चीटी, इस दाल को मैं अपनी मैना को ही दूंगा, उसका पेट खाली रहे और मैं अपना पेट भर लूं, अच्छा थोड़ी लगे। तो आप चलें?
3: हाँ चलो, मुझे रास्ते में छोड़ देना।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाओ। चीटी, इससे पहले कि मैं अपने सिर से तुझको उतारूं, कुछ कहना चाहता हूँ।
3: अरे तो कहना।
2: चीटी, मुझे विश्वास नहीं होता।
3: किस बात का?
2: हम जैसे छोटे प्राणियों को ये जीत मिल कैसे गई?
3: तो मैं बताती हूँ, मैं चींटी हूँ, सबसे छोटा प्राणी, लेकिन जिसको पकड़ती हूँ सिर भले कट जाए छोड़ती नहीं हूँ। मान लो कि हाथी है व्यवस्था यानी तंत्र, मैंने क्या किया, मैं उस तंत्र के अंदर घुसी, घुसी ना?
2: हाँ।
3: तब जाने का डर था लेकिन हिम्मत नहीं हारी, बस मेरे घुसते ही तंत्र घबरा गया, डर गया कि जब एक चींटी यहाँ तक घुसाई तो कल को तो न जाने क्या होगा। क्या समझे?
2: कुछ नहीं।
3: कुछ नहीं तो फिर चलो मुझे रास्ते में छोड़ो और जाके मैना को दाल खिलाओ।
2: हाँ हाँ, मगर मुझे ये बात तो समझाती जाओ।
3: अगली मुलाकात में, तब तक मैना का ख्याल रखना।
4: रहा है पंछी मन का, बोल रहा है पेट की आग बुझाने को, अन्न का दाना ढूंढ रहा है।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक जंगल जंगल। लेखक थे योगेश त्रिपाठी, प्रस्तुतकर्ता थे महेश बाबू सक्सेना।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242। सुनो ना।
1: हाँ।
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर। सुनो ना।
1: हाँ।
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज सुबह 10:50 पर हम आपको सुनवाएंगे रूपक बुझती सरिताएं। प्रस्तुति सहयोग है सागर सिंह का, वाचन स्वर रुचि सिंह बघेल का और आरेख डॉक्टर नौशाद अली अंसारी का है। साथ ही आप 10:05 पर अब से कुछ ही देर बाद सुनेंगे जश्न समा। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में जश्न समा में हम आपको सुनवाएंगे कुछ कव्वालियां।

ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरा लाल लोंगरे, वाचन स्वर दीपा सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने निमाड़ांचल को बड़ी सौगात देते हुए 4,415 करोड़ रूपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत NH 347 पीके हिवारखेड़ी रोशनी आशापुर रूधी मार्ग को 2 लेन और देशगांव जुलवानिया मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना से खंडवा बैतूल खरगोन बड़वानी जिलों में यातायात सुगम होगा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हाल ही में वनग्राम आवलिया में वन विभाग और L&T कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेन्द्र सिंह अचालिया ने युवाओं से अपील करते वे कहा है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक युवा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। युवा कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्रों के 18 से 35 साल के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉ. शाह ने कहा कि सरकार युवाओं को और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम खंडवा ने 20,490 कंटूर ट्रेंच बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जिले ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कर देश में 5वां स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे खालवा और खंडवा में मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे तथा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। खंडवा में आयोजित जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को उर्वरक वितरण के ई टोकन सिस्टम की जानकारी देने और पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष जोर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गत दिनों खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रूपये लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। इस परियोजना से 160 आदिवासी महिलाओं को मछली पालन, पशुपालन, बतख पालन और फल सब्जी उत्पादन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग करने की अपील की है। विभाग द्वारा खाद और बीज की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है और नमूनों की जाँच भी कराई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय से सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। खंडवा में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अगम जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारेकण की उपस्थिति में 60 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रथम बैच को भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार और कृषि आधारित उद्यमिता की जानकारी दी गई है। वहीं श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों से 13 जून तक अनिवार्य रूप से EKYC पूरी कराने की अपील की है। उधर पुरुष लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर माणिक के स्मारक वाचनालय में संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। खंडवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर निगम द्वारा झीलोद्यान और नमो वन क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा तैयार सीड बॉल के उपयोग की भी तैयारी की जा रही है। मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए मध्य प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आपने सुनी खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरालाल लोंगरे का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
2: ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको आज सुनवा रहे हैं जश्न समा, कव्वालियों पर आधारित। ये कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाएंगे कुछ कव्वालियां।

आकाशवाणी रीवा से सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कव्वाली। आवाज़ है जहीर अहमद खान वारसी और शहीद अहमद खान वारसी की।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, आपकी फरमाइश है। सूरज फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। गीत लिखा है हसरा जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। इसकी फरमाइश इस गीत के बाद हम आपको बताएंगे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश साधना के साथ। अगला गीत हमने लिया है धरती फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश इस तरह से है, अशोकनगर से ममता राकेश जैन, कोटा से सरोज सुरेश योगी, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने, पालीताना से शशि जैन ने इस गीत को पसंद किया है। इन दोनों गीतों को पसंद किया था हमारे इन सभी श्रोताओं ने। राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी और मोहसिनपुरा देवास से जमील खान, इमरान और फुरखान ने इसी गीत को पसंद किया है। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान गोविंद, सालग राम, दशरथ बागवान और लोकेंद्र वर्मा ने इसी गीत को पसंद किया है आप सभी ने। तो आइए आपको धरती फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं, अपने साथियों के साथ सुनिएगा।

और लीजिए, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म में आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी को। गीत लिखा है मजरू ने, संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत को पसंद किया है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। और इसी गीत को पसंद किया है सिंधी कैंप पक्की खोली अकोला से आशा संतानी, श्यामली संतानी, नैन्सी संतानी और संतानी सभी सखियों ने। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे थे। दिन के 12:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की 10वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, सारे और मुश्ताक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फाता के न चाहने पर भी उनका मिलना जारी रहता है। सारे बगावत पर उतर आती है और रसूल के जुल्म सहने से इनकार कर देती है। मुश्ताक सायरा को तलाक दिलवाने के लिए वकील के पास जाता है। और अब आगे

0: वकील साहब, तो क्या रसूल और साराय का तलाक हो जाएगा?
1: मुश्ताक, कानूनी तौर पर तलाक की कोई वजह होनी चाहिए।
0: तो तलाक की वजह है, साराय खुद चाहती है कि वो रसूल के साथ ना रहे।
1: ये कोई सटीक वजह नहीं, कुछ और सोचना होगा।
0: वकील साहब, जब साराय उसके साथ रहना ही नहीं चाहती तो इससे ज्यादा तलाक की और क्या वजह होगी?
1: तलाक के लिए कोई ठोस वजह चाहिए भाई, इसके बिना तलाक संभव नहीं है।
0: वकील साहब, रसूल से साराय प्यार नहीं करती, रसूल साराय को मारता पीटता रहता है, क्या ये बड़ी वजह नहीं है तलाक के लिए?
1: ये तो साराय कह रही है, रसूल क्या कहता है हमें ये भी जानना होगा।

0: एक पक्ष की बात पर हम केस नहीं जीत सकते।
1: वकील साहब, रसूल सारे को तलाक नहीं देगा।
0: अगर रसूल तलाक को राजी नहीं तब तो मुश्किल है, क्योंकि रसूल सारे का शौहर है और उसके कहे पर ही अदालत कार्रवाई करेगी।
1: लेकिन वकील साहब, रसूल अच्छा आदमी नहीं है, उसके कई औरतों से शहर में ताल्लुकात है, वो नशा करता है, मारपीट करता है, क्या इस वजह पर सारे को तलाक नहीं मिल सकता?
0: देखो मुश्ताक, मर्द अगर घर से माह दो माह के लिए बाहर रहे तो ऐसा संभव है, फिर भी आपको सबूत के तौर पर उन औरतों को अदालत में गवाही के लिए लाना होगा। अगर वो औरतें ये कबूल करें कि रसूल से उनके संबंध हैं, तो शायद तलाक मिल जाए। लेकिन एक दिक्कत और होगी, अगर रसूल ये साबित कर दे कि सारे उसके शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं करती और वो इसलिए उन औरतों से संबंध रखता है, तो सारे को तलाक नहीं मिल सकता।
1: लेकिन वकील साहब, ये सब साबित कैसे होगा?
0: अच्छा एक बात बताओ, सारे का कोई बच्चा है?
1: नहीं।
0: सारे कभी गर्भवती हुई?
1: नहीं।
0: सारे ने कभी रसूल को औरतों के साथ हम बिस्तर होते देखा है?
1: वकील साहब, ये लोग कहते हैं, सारे ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम ये जानते हैं कि रसूल के ताल्लुकात औरतों से हैं।
0: मुश्ताक, अदालत सबूत देखती है, अगर तुम सबूत ला सको तभी ये संभव है, और बिना सबूत के अदालत सारे को तलाक नहीं दिला सकती।
1: वकील साहब, तो क्या अदालत सारे के जज्बात को नहीं सुनेगी?
0: मुश्ताक साहब, अदालत भावनाओं पर नहीं चलती, अदालत सबूत देखती है, और बिना सबूत के अदालत कोई फैसला नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि सारे का तलाक हो जाए तो ठोस सबूत के साथ आइए, तभी तलाक हो सकता है।
1: ठीक है वकील साहब, अच्छा मैं चलता हूं।
0: ठीक है,
1: खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
1: वकील साहब ने तो मना कर दिया, अब ऐसा करता हूं कि मौलवी साहब के पास जाता हूं, देखता हूं उनकी क्या राय है। हाँ ये ठीक रहेगा।

0: अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब।
1: वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे।
0: मौलवी साहब, एक जरूरी मसले पर आपसे मशवरा लेना था।
1: आओ आओ बैठो। कहो क्या बात है?
0: वो तलाक के सिलसिले में।
1: तलाक? किसका तलाक?
0: सारे और रसूल का।
1: तलाक कौन देना चाहता है?
0: जी सारे
1: है? और रसूल?
0: रसूल नहीं चाहता मौली साहब।
1: ओ, तो ये मुश्किल है। देखो भाई, रसूल की इजाजत के बगैर सारे को तलाक नहीं मिल सकता।
0: लेकिन मौलवी साहब, सारे उसके साथ नहीं रहना चाहती।
1: देखो, एक बार निकाह हो जाने के बाद जब तक मर्द ना चाहे तलाक नहीं मिल सकता।
0: सारे उसके साथ खुश नहीं है मौलवी साहब, और रसूल कई औरतों से ताल्लुकात रखता है और सारे से अच्छा सलूक भी नहीं करता।
1: देखो भाई, हमारे इस्लाम धर्म के कानून के मुताबिक तलाक मर्द की इच्छा पर मुनसर करता है, और एक मर्द अगर चार निकाह भी कर ले तो भी वो जायज है। जायज है। औरतों को पाक साफ होना चाहिए। ऐसे में सारे को तलाक नहीं मिल सकता। अरे, हम इस्लाम मजहब के खिलाफ नहीं जा सकते। और सुनो, औरतों का अपना धर्म है, उसे निभाना चाहिए। और अगर कोई औरत उसे उसे नहीं निभाती तो

0: धर्म उसकी रक्षा नहीं कर सकता। और जहां तक मैंने सुना है, सारे रसूल को छोड़कर किसी और के साथ रहना चाहती है। अरे अरे, ये तो मजहब के खिलाफ है। एक औरत को ऐसी आजादी नहीं दी जा सकती।
1: कोई और रास्ता है मौलवी साहब?
0: देखो भाई, अगर सारे का खामिंद उसे तलाक देने को राजी हो तभी हो सकता है, लेकिन उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो तलाक नहीं माना जाएगा।
1: तो क्या एक औरत को आजादी से रहने का हक नहीं है?
0: देखो मुश्ताक, एक औरत की आजादी उसके परिवार वालों के हाथ होती है। उसका खामिंद अगर चाहे तो आजादी दे, नहीं तो उसके कहने पर चले। ये हमारा इस्लाम मजहब कहता है और हम उसी मजहब पर चलते हैं। और सुनो, इस्लाम मजहब को छोड़कर हम कोई और बात नहीं कर सकते। और अगर कोई औरत हमारे मजहब के खिलाफ जाती है तो हमारा मजहब सख्त सजा की वकालत करता है।
1: अच्छा मौलवी साहब, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।

0: तो क्या हमारा मजहब एक औरत को जुल्म सहने के लिए ऐसे छोड़ सकता है? सारे तुम यहां?
1: आओ अंदर आओ।
0: तुम्हारी ये हालत?
1: वो
2: रसूल ने मारा है बेटा, लेकिन अब ठीक है। मुश्ताक बेटे, तलाक की क्या बात हुई? कब तक काम हो जाएगा?
0: अब्बू, जब तक रसूल तलाक देने को राजी नहीं होता तब तक तलाक नहीं हो सकता। हमें रसूल से कबूल करवाना होगा कि वो सारा को तलाक दे।
2: बेटा, मदरसे में जाकर मौलवी साहब से कुछ मशवरा करते, शायद वो हमारी कुछ मदद करें।
0: मैं उनसे मिल चुका हूं अब्बू। उनका कहना है कि अगर रसूल तलाक देना चाहे तभी सारे को तलाक मिल सकता है। वो हमारे बीच मजहब को आड़े ला रहे हैं, ऐसे में हम कभी भी नहीं मिल सकते अब्बू।
2: तब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है बेटा, कि हम रसूल से बात करें।
0: ठीक है अब्बू, ये काम आप खुद करें तो बेहतर होगा।
2: हाँ बेटा, मैं खुद ही रसूल से बात करता हूं।

0: ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।
1: क्या?
2: लो चाय पियो।
1: देखो रसूल, मैं साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि तुम सारे को तलाक दे दो।
0: मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता।
2: अम्मा मियाँ पागल हो गए हो क्या? अपनी बेटी को तलाक दिलवाओगे?
1: हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मुझे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अरे तुमने तो सारे को जीते जी मारने का काम किया है, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा।
0: मैं सारे को तलाक नहीं दे सकता।
1: रसूल, सारे अब तुम्हारी बीवी बनकर नहीं रह सकती। सारे तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए अब तुम सारे को तलाक दे दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
0: जब तक सारे को मैं तलाक ना दूं, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और सारे को पाने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। फाता, फाता तुम क्यों नहीं बोलती? मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया है, और इसी लालच में तुमने अपनी बेटी सारे का निकाह मुझसे करवाया, और अब तलाक देने को कहती हो?
1: देखो रसूल, अगर तुम सारे को तलाक देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ।
0: सारे का हुस्न तो मेरा हो ही गया था, अब उसे छोड़ने के लिए देखो भाई, कम से कम 10,000 रुपए दो तो मैं सारे को तलाक दे दूंगा।
1: ठीक है, मैं जल्दी ही 10,000 रुपए तेरे हाथ में दूंगा।
0: तो ठीक है, जिस दिन पैसा दोगे उसी दिन तलाकनामे पर दस्तखत करूंगा मैं।
1: ठीक है, मैं अभी जाके मुश्ताक को बताता हूँ कि हमें जल्द से जल्द 10,000 रुपयों का इंतजाम करना होगा, ताकि हमें इस नामुराद से छुटकारा मिल सके। जाता हूँ।

0: बेटा
1: हाँ अम्मी
0: खाना खा ले।
1: अम्मी रख दो मैं खा लूंगा, पहले काम खत्म कर लूं।
0: अरे क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी सेहत का तो ख्याल कर।
1: अम्मी मुझे जल्द ही 10,000 रुपए जमा कर रसूल को देने हैं।
0: मुश्ताक बेटा मुझे तो लगता है रसूल सबको झांसा दे रहा है, वो ठीक आदमी नहीं है बेटा।
1: अम्मी उसने सारे को तलाक देने के बदले 10,000 रुपए मांगे हैं।
0: अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे बेटा, जल्दी से सारे का तलाक हो जाए, पर अपनी सेहत का भी तो ख्याल रख। चल खाना खा ले।
1: अम्मी तू बस अल्लाह से दुआ कर कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं।
0: हाँ हाँ अल्लाह तेरी मुराद जल्द पूरी करेगा। तू सिर्फ सारे को ही नहीं बचा रहा बेटा, बल्कि उस जैसी कई औरतों के लिए एक नया रास्ता बना रहा है। लोग रिश्तों पर यकीन करें, उनमें एतबार बढ़े और वो एक दूसरे के जज्बात समझने की कोशिश करें, तो फिर किसी भी औरत की हालत सारे जैसी नहीं होगी।
1: अम्मी कोशिश तो मेरी यही है, पर पहले पैसे का इंतजाम हो जाए।
0: अकेला कितने पैसों का इंतजाम कर पाएगा, इसमें तो बहुत देर हो जाएगी बेटा।
1: अम्मी मेरे साथ हसन मियां भी तो हैं, वो भी पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे मेरा काम और आसान हो जाएगा।
0: अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। हसन भाई जान ने भी बहुत दुख देखे हैं, चलो अब उन्हें भी थोड़ी राहत मिल जाएगी।
1: अम्मी अब तू जा, थोड़ी देर सो ले, अभी मुझे बहुत काम करना है।
0: ठीक है पर खाना खा लेना।
1: हाँ हाँ खा लूंगा।
0: हाँ
1: तू जा।
0: रख दिया है।
1: सलाम अब्बू।
2: वालेकुम सलाम। अरे मुश्ताक आओ बेटा आओ, कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ अब्बू, आप कैसे हैं?
2: खैरियत है।
1: अब्बू आपने जैसा कहा था मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब हमें रसूल को पैसा देकर तलाक नामे पर उसके दस्तखत ले लेने चाहिए।
2: मैंने भी कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है बेटा।
1: अब्बू फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए।
2: हाँ मैं अभी उसके पास जाता हूँ और तलाक नामे पर उसके दस्तखत लेकर आता हूँ।
1: अब्बू आज मेरे लिए बहुत ही मुबारक दिन है।
2: हाँ बेटा सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे और सारे के लिए भी मुबारक दिन है। आज से सारे के दुखों का अंत हो जाएगा, आज वो रसूल के जुल्म और सितम से मुक्त हो जाएगी।
1: अब्बू ये आप जैसे पाक दिल अब्बू की दुआ है कि हम फिर से एक बार मिल पाएंगे।
2: हाँ बेटा ये तो तुम्हारी और सारे की पाक मोहब्बत है जो एक बार फिर तुम दोनों एक हो रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत को बरकरार रखे। अच्छा बेटा तो मैं रसूल के पास जाता हूँ और उसे पैसे देकर आता हूँ।
1: हाँ, मैं आपका यही इंतजार करता हूँ।
2: ठीक है बेटा मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। इस मुबारक दिन का इंतजार मुझे भी था। जाता हूं बेटा।
1: इंशाल्लाह।
3: तलाक नामे पर दस्तखत तो करवा लिए, लेकिन सारे मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा।
4: सुनो भाई।
1: हाँ?
4: तुम एक काम करोगे?
1: रसूल भाई जैसा कहो करूंगा।
4: तुम्हें एक आदमी को खत्म करना है
1: भाई। पैसा खर्च करो तो काम हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस काम में माहिर हैं।
4: लेकिन इस काम को गुप्त तरीके से करना होगा कि हम पर किसी को शक भी ना हो।
1: इन वादियों में ऐसी घटना आम बात हो गई है। आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा।
4: तो ठीक है, काम के बाद पैसे मिल जाएंगे। फिलहाल ये रखो।
1: ठीक है, लेकिन मारना किसको है?
4: सारे और मुश्ताक को।
1: भाई लेकिन सारे तो आपकी बीवी है।
4: बीवी थी, मुझसे तलाक लेकर उस मुश्ताक से निकाह कर बैठी। आज तक औरतों को अपने पैर की जूती के नीचे रखता आया हूं, पर इस सारे ने मुझसे तलाक लेकर मुश्ताक से निकाह कर लिया।
1: ये तो बहुत बुरी बात है, एक औरत की इतनी हिम्मत कि मर्द के फैसलों के खिलाफ जाए। अरे उसे तो घर का काम करना है और शोहर की देखभाल करनी चाहिए, और वो आपको छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। ये तो बहुत बुरा है। आप फिक्र ना करें, हम आपका काम करवा देंगे।
4: ठीक है, अब जाओ, काम होने के बाद मिलना।
1: लेकिन वो लोग मिलेंगे कहाँ?
4: हसन भट्ट की कोठरी में वो दोनों होंगे। आज ही उनका काम तमाम कर दो।
1: ठीक है, हो जाएगा।
4: जाओ।

0: कौन? मुश्ताक, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी।
1: सारे सारे, आज हम एक बार फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे।
0: अब मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं?
1: नहीं सारे, नहीं। बस हमने अपनी परेशानियों को खुलकर नहीं रखा और यही वजह थी कि हमारे बीच दूरियां बढ़ी।
0: अब ऐसा कभी नहीं होगा मुश्ताक, मैं तुमसे वायदा करती हूँ, अब हम अपने परिवार को संभालने की कोशिश करेंगे।
1: सारे, परिवार की ताकत को समझो। अगर तुम्हारे अब्बू और मेरे अम्मी अब्बू ने हमारी मदद ना की होती तो शायद हम कभी ना मिल पाते।
0: हाँ मुश्ताक, ये मुझे एक खौफनाक ख्वाब सा लगता है, पर अब ऐसा नहीं होगा मुश्ताक, हम एक रहेंगे, हम हर हाल में एक रहेंगे, मैं वायदा करती हूँ मुश्ताक।
1: सारे सारे, हमें एक दूसरे पर एतबार रखना होगा।

0: तभी हम अपने ताल्लुकातों में आने वाले पलों को अपने हिसाब से रख पाएंगे और इसी से हमारे बीच कभी दूरियां नहीं आएंगी।
1: आप ठीक कहते हैं मुश्ताक, पर एक बात मैं जानती हूँ कि आपका प्यार जहाँ भी होगा वहाँ हम हर मुश्किल को आसान कर लेंगे। पर वायदा करो कि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे और मुझे इसी तरह प्यार करते रहोगे।
0: सारे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और इसके लिए मुझ पर किसी का दबाव नहीं है और मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा।
1: मुझे विश्वास नहीं होता कि हम फिर से एक हैं। हमारे जीवन में ये मुबारक दिन भी आएगा, मैं तो इसका विश्वास ही खो बैठी थी मुश्ताक।
0: आज हमारे लिए मुबारक दिन है, बहुत मुबारक दिन।
1: मुश्ताक, आज अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं कभी की मर गई होती।
0: सारे, इस मुबारक घड़ी में ऐसे तो ना बोलो।
1: आप नहीं जानते मुश्ताक, ये दिन मैंने किस तरह गुजारे हैं।
0: वो सब एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। सारे, अब हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है और पुराने दिनों को याद कर यूं दुखी होने की जरूरत नहीं है।
1: मुश्ताक, अगर मुझे आपका प्यार ना मिला होता तो रसूल के जुल्म और उसके लिए जख्मों को मैं कभी ना सह पाती।
0: छोड़ो भी ये सब बातें, अब हमें नई जिंदगी शुरू करनी है। और ये देखो, ये लाल रंग का फैन मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से तैयार किया है। जाओ जाओ, जल्दी से इसे पहन लो।
1: इसे आपने बनाया है?
0: हाँ सारे, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: इसकी क्या जरूरत थी?
0: नहीं, तुम्हें हो या ना हो, पर मुझे थी। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूँ।
1: ऐसा ना कहो।
0: क्यों ना कहो, आखिर तुम मेरी बीवी हो।
1: मुश्ताक, आप अब मेरा साथ कभी ना छोड़ना। मैं अपने रास्ते से भटक गई थी और उसका नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ।
0: अरे अरे सारे, तुम रो रही हो।
1: नहीं मुश्ताक, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं।
0: तुम ऐसा ना सोचो सारे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
1: ये आपका ही तो विश्वास है कि सारे आज आपके सामने खड़ी है, वरना मैं तो कभी की हिम्मत हार चुकी थी।
0: ओहो सारे, अब यूं ही बातें करती रहोगी या ये फिर पहन कर भी दिखाओगी?
1: हाँ, मैं अभी इसे पहन कर आती हूँ, बस अभी आई।
0: सच कहूँ सारे, इस जोड़े में तुम बिल्कुल रानी लग रही हो। खुदा किसी की नजर ना लगाए।
1: ओहो, देखो तो कौन आया है।
0: हाँ देखता हूँ।
2: तुम मुश्ताक हो?
0: जी कहिए।
2: और घर में कौन कौन है?
0: घर में मैं और मेरी बीवी सारे हैं।
2: क्या?
1: मुश्ताक,
2: भी मारो।
0: सारे
1: मुश्ताक,
3: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां की 10वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।

महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारत और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम की बैठक कल इंदौर में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन देशों के वरिष्ठ राजनयिक भी शामिल होंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया और पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काका मेगाहारा हॉकी स्टेडियम में शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह न देकर खुश रहने की वजह बने। और देखिए आपके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान सजाने हम लेकर एक बार फिर हाजिर हैं, आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा। तो स्वीकार कीजिए हेमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। वृक्ष, नदियां और ये नीला आकाश धरती माँ का है मानो आशीर्वाद। जो करे निस्वार्थ प्रेम उससे, उसे प्रकृति सब कुछ दे देती है। अपने आंचल में हमें ममता से ढक लेती है। हाँ बहनों, प्रकृति ने स्वच्छ पर्यावरण के रूप में हमें मानो अपना आशीर्वाद दिया है। ये पर्यावरण ही है जो हमारा संरक्षण करता है, हमें जीवन देता है। मगर हम ही ना जाने क्यों स्वार्थवश पर्यावरण का विनाश करने में लगे हुए हैं। प्रकृति तो अपना प्यार दुलार हम पर लुटाती ही है और हमें यह सीख देती है कि खुशियां बांट देने से खुशियां कम नहीं होती। प्रकृति का हर रंग एक नई कहानी सुनाता है, जो दिल से महसूस कर सके वही समझ पाता है। आज हम अपनी खुशी के खातिर न केवल पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि अपने अस्तित्व को ही समाप्त करने में लगे हुए हैं। हाँ बहनों, यही वजह है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने, उसकी सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तभी से यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक मंच रहा है। वास्तव में पर्यावरण प्रकृति का हिस्सा है और मानव जीवन प्रकृति के साथ अनुकूलता में ही संभव है। हम प्रकृति के पोषण और संरक्षण के साथ ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, न कि उसे क्षति पहुंचाकर। इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी अच्छी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, साथ ही हमारी बुरी आदतें जैसे पानी प्रदूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की कटाई, प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को प्रभावित करता है, जिसका नतीजा हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ता है। तो बहनों, आज केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा। पौधारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, हरित क्षेत्र बढ़ाने होंगे।

और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर भी रोक लगानी होगी। हमारे पूर्वज प्रकृति को ईश्वर स्वरूप मानकर पूजते थे, उसका संरक्षण करते थे, मगर आज आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी संस्कृति और संस्कार मानो भूलते से जा रहे हैं। हमें एक बार फिर अपनी सनातन संस्कृति की ओर लौटना होगा, अपनी परंपराओं की ओर लौटना होगा, तभी हम पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य निभा पाएंगे, प्रकृति का ऋण चुका पाएंगे। तो क्यों ना सहेज कर रख लें इस प्रकृति को आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। और आज बदलते परिवेश और बदलते समय में क्यों ना एक बार फिर संवार लें हम ये रिश्ते, ये मौसम और ये पल।

0: अभी बहनें सुन रही थीं मोनाली ठाकुर के स्वर में लुटेरा फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया था अमित त्रिदेव ने। खिलते हुए फूलों में रंग हजार नजर आते हैं, खिलते हुए फूलों में रंग हजार नजर आते हैं, प्रकृति के खूबसूरत से नज़ारे सीधे दिल में उतर जाते हैं। सुबह की ठंडी हवा जब चेहरे को छू जाती है तो रूह तक में एक नई ताजगी सी उतर आती है। हाँ बहनों, ईश्वर ने प्रकृति के रूप में अनमोल धरोहर हमें सौंपी है और प्रकृति की ये खूबसूरती हमारे मन को सुकून देती है, शांति देती है। आज हर मन अवसाद, तनाव और निराशा से भरा है और हर कोई शांति चाहता है, सुकून चाहता है, और हमें ये सुकून मिलता है प्रकृति की छाया में, प्रकृति की पनाहों में। मेघ के साये में पर्वतों की बाहों में, मेघ के साये में पर्वतों की बाहों में सुकून यहाँ बसता है प्रकृति की पनाहों में। और यदि हम प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करें तो शायद कुछ पल के लिए ही सही तनाव से दूर रह सकते हैं। आज हम छोटे छोटे घरों, बालकनी या योगा सेंटरों तक सीमित हो गए हैं। काम के दबाव और समय की कमी ने हमें प्रकृति से दूर सा कर दिया है, तो चलिए थोड़ा सा समय ही सही खुद के लिए जरूर निकालें। तो चलिए फिर से एक बार प्रकृति की ओर लौटिए। खुला आसमान आपका इंतजार कर रहा है और सूरज, चांद, सितारे आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। पंछियों की चहचहाट आपकी मेडिटेशन प्रक्रिया में सुधार करेंगे। खुले आसमान के नीचे ध्यान लगाने का अर्थ है प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान लगाना। दुनिया भर के विशेषज्ञ कहते हैं इस तरह ध्यान से तनाव कम होता है। यह आपके मन को स्थिर करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है और वहीं यह प्रकृति के साथ आपका एक गहरा संबंध स्थापित करता है। और यही दृष्टिकोण हमें सकारात्मक बनाता है और एक सकारात्मक सोच हमारे पूरे जीवन को सुंदर बनाती है। एक शांत और खुली जगह पर बैठें जहां आप प्रकृति को महसूस कर सकें। आंखें बंद करके चित्त को शांत होने दें, आसमान को महसूस करें, खुले विशाल आकाश के नीचे खुद के व्यक्तित्व को महसूस करें। हवा की सरसराहट, पंछियों की आवाजें, प्राकृतिक प्रतिध्वनियां, इन्हें जज करने की बजाय इन्हें अपने ध्यान का हिस्सा बनाएं। सुबह ध्यान में सूर्य की गर्माहट और रात में चांद की शीतलता को गहराई से महसूस करें। अब धीरे से आंखों को खोलें और आकाश की ओर देखें और महसूस करें कि मन को एकाग्र करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो रोज सूरज, चांद, सितारों पर ध्यान केंद्रित करें और प्रकृति से कहें धन्यवाद। कहीं बर्फ की चादर, कहीं हरियाली का नजारा है, कहीं बर्फ की चादर, कहीं हरियाली का नजारा है, कुदरत का हर एक रंग यहाँ कितना प्यारा है। धरती का श्रृंगार है वृक्ष, जीवन का आधार है वृक्ष, ऋषि मुनियों की इस धरती पर ईश्वर का अवतार है वृक्ष। हाँ बहनों, हमारी संस्कृति में वृक्षों को हमेशा से ही देव स्वरूप मानकर पूजा जाता रहा है। तो चलिए इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं ये वार्ता, वृक्ष हमारे पूज्य। वार्ताकार हैं सर्व मंगला रिचारिया।
1: बहनों, भारतीय संस्कृति में वृक्षों का विशेष महत्व है क्योंकि वे हमारे जीवन के प्राण हैं। पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में पेड़ पौधों को बड़ा पवित्र और देवता के रूप में माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में से सिर्फ पृथ्वी पर ही मानव जीवन है और उसकी वजह है पंच तत्वों से इसका निर्माण होना। पंच तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है वायु, और वायु हम प्राप्त करते हैं हरे भरे वृक्षों से। ईश्वर ने हमारी पृथ्वी को भरपूर प्राकृतिक वातावरण से सुसज्जित किया है। सारी धरती को हरियाली यानी हरे भरे वृक्षों की कीमती सौगात प्रदान की है, जिसकी बदौलत मानव एक स्वस्थ जीवन जी पाता है। जब से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पौधों में भी जीवन होता है, लोक विश्वासों में दृढ़ता आई है। इसलिए पाप और पुण्य की अवधारणा भी इसके साथ जुड़ गई और देवतुल्य वृक्षों का संरक्षण पुण्य वो उनका विनाश करना पाप स्वरूप समझा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य वृक्षों का आरोपण करता है, वृक्ष परलोक में उसका पुत्र होकर जन्म लेता है, और जो वृक्षों के पुष्पों को दान करता है वह समृद्धशाली होता है। आदि काल से ही मानव का प्रकृति के साथ गहरा संबंध रहा है। मनुष्य ने प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया और इन वृक्षों के मीठे मीठे फलों को खाकर अपनी भूख को शांत किया और सूर्य की तपन से बचने के लिए इन्हीं वृक्षों को अपना आश्रय बनाया। सबसे महत्वपूर्ण प्राणदायिनी वायु यानी ऑक्सीजन भी इन्हीं वृक्षों से लेकर मानव ने अपनी निरंतरता को जीवित रखा। जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ता गया, वैसे वैसे वृक्षों का उपयोग भी बढ़ता गया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वृक्षों की उपयोगिता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अगर इस जगत में पेड़ पौधे न होते तो कुछ भी न होता। जी हाँ, वृक्षों के महत्व एवं गौरव को समझाते हुए हमारे पूर्वजों ने भी इसकी उपयोगिता एवं आराधना पर बल दिया है। बहनों, हमारी धार्मिक सभ्यता

में हर वृक्ष की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। जैसे वट सावित्री के अवसर पर स्त्रियां अटल सौभाग्य देने वाले वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ती है। इसी तरह से पीपल के वृक्ष में भी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पर जल चढ़ाने से व इसकी पूजा करने से संतान सुख मिलता है। इसके तने पर सूत लपेटना व परिक्रमा लगाने का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रखने से मानव जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयां दूर होती हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी इसे 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष बताया है। बहनों, इसके अतिरिक्त तुलसी की नित्य पूजा करके जल चढ़ाना, उसके पास दीपक जलाकर रखना भारतीय नारियों का एक धार्मिक कृत्य है। तुलसी को विष्णु भगवान की प्रिया मानकर इसकी पूजा की जाती है। तुलसी दल का भी विशेष महत्व माना जाता है। यह अकाल मृत्यु तक को हर लेती है। यहाँ तक कि हम अपनी हर पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करते हैं। ऐसा भी कहा गया है, जब तक पूजा और प्रसाद में तुलसी पत्र न रखा जाए तो भगवान भी उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। बहनों, हम देखते हैं कि तुलसी का कितना महत्व है। इसके अतिरिक्त इसे औषधि के रूप में भी माना जाता है। तुलसी का उपयोग हम दवाइयों एवं लेप के रूप में भी करते हैं। प्रतिदिन 5 पत्ती तुलसी की खाने से हम बीमारी से दूर रहते हैं। सर्दी खांसी में भी तुलसी की पत्ती की चाय बनाकर पीने से खांसी सर्दी दूर हो जाती है। यहाँ तक कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी खाने की वस्तुओं एवं पानी में तुलसी डाल देने से अशुद्ध नहीं होता है। बहनों, हम देखते हैं कि हर वृक्ष का अपना अलग अलग महत्व है और हर जगह वृक्ष को अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। जैसे गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके पत्ते पर भोजन करना शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि केरल जैसे राज्य में भोजन थालियों में न परोसकर केले के पत्ते में खाना शुभ माना जाता है। इसी तरह से अशोक अष्टमी के दिन अशोक वृक्ष की पूजा दुख को मिटाकर आशा को पूर्ण करने के लिए की जाती है। बहनों, इसके अलावा आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास मानकर कार्तिक मास में इसकी पूजा परिक्रमा करके स्त्रियां सुहाग का वरदान मांगती हैं तथा कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना भी शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आम के वृक्ष के पत्ते मंजरी छाल और लकड़ी यज्ञ और अनुष्ठानों में उपयोग की जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वृक्षों का उपयोग धार्मिक दृष्टि ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नीम। नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसकी हर एक चीज उपयोगी है। जैसे नीम की पत्ती हम दवाई के रूप में करते हैं, ये कीटाणु नाशक होती है। साथ ही नीम की छाल एवं नीम की दातुन भी उपयोग में लाते हैं तथा नीम की पत्ती को चबाकर खाने से हमारे रक्त की शुद्धि होती है। अतः हम देखते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। औषधि के रूप में एवं धार्मिक दृष्टि से ये अपनी महत्वता बताते हैं। यहाँ तक कि ये हमें खाद्य पदार्थ तथा हमारे जीने के लिए उपयोगी प्राणवायु प्रदान करते हैं। अतः वृक्ष हर रूप में हमारे लिए उपयोगी है। बहनों, इन उपयोगों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वृक्षों का विनाश होता जा रहा है। आज मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए वृक्षों की कटाई करता जा रहा है। कभी आपने ये सोचा है कि वृक्षों का दिन प्रतिदिन कटना हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या बना सकता है? अगर प्राथमिक स्तर पर इसका परिणाम देखें तो हमारे लिए आवश्यक प्राणवायु ऑक्सीजन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस जिसे वृक्षों द्वारा अवशोषित किया जाता है वह वृक्षों के कटने से बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं और ऐसी ही समस्याएं आगे चलकर बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकती है। जैसे हम देख रहे हैं कि वृक्ष के कटने से वर्षा भी अनियमित होती जा रही है, क्योंकि वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत वृक्ष ही है। वृक्ष ही बारिश का काम करते हैं, को आकर्षित करते हैं, और जब वृक्ष ही न होंगे तो प्रकृति का असंतुलित होना स्वाभाविक है। अतः हम सभी यह जानते हुए भी अपनी शक्तियों को बढ़ावा देते जा रहे हैं और जिससे हमें जीवन मिलता है उसको हम काटते जा रहे हैं। बहनों, अपनी थोड़ी सी जरूरतों के लिए हम पृथ्वी का विनाश करते जा रहे हैं। आज जिस तरह से अपने लाभ के लिए वृक्षों को काटकर प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, बिना यह सोचे कि आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। बहनों, जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वृक्ष लगातार कम होते जा रहे हैं।
जिससे

0: प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है तथा प्रदूषण, अनियमित वर्षा जैसे कई कारण सामने आते जा रहे हैं। अगर आज का मानव चाहे तो वह इस संतुलन को बिगड़ने से बचा सकता है, जैसे वृक्ष की कटाई कम करके, वृक्षारोपण करके। अतः वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी ही नहीं बल्कि हमारा जीवन ही है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करें। अतः इसी प्रवृत्ति को प्रबल करके इसकी वृद्धि और संरक्षण में सहयोग करें। इसके अलावा हम हर माध्यम से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी को वृक्ष आरोपित करने के लिए जागरूक करें और उन्हें इससे होने वाली समस्याओं के बारे में बताएं, जिससे आने वाले वक्त में हम अकाल तथा महामारी जैसे प्रकोपों से बच सकें। बहनों, अतः हम यह प्रण करें कि जितने वृक्ष काटे जाएं उससे ज्यादा लगाए भी जाएं, ताकि प्रकृति की सुरक्षा के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता भी सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, तो क्यों न हम वृक्ष लगाकर असंतुलित होते पर्यावरण और पृथ्वी के विनाश के संकट को कम करने में सहयोग करें। इसके अलावा हमारी हिंदू सभ्यता में ऐसे कई वृक्ष जैसे बेल, जामुन, महुआ, छेवला, पलाश की पूजा की जाती है और भी बहुत से उपयोग में लाया जाता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम वृक्षों को काटने से बचाएं, ताकि हमारी प्रकृति फिर से वैसी ही सुंदर और सुसज्जित दिखे।
1: अभी बहने सुन रही थी ये वार्ता वृक्ष हमारे पूज्य। वार्ताकार थी सर्व मंगला रिछारिया। और लीजिए अब सुनिए पहली फिल्म का ये गीत, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री और साथियों के स्वर में। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है MM करीम ने।

साफ सुथरा घर सलीके से सजा हर सामान हमारे मन को खुश कर देता है और हम बहनों को तो साफ सफाई बेहद पसंद होती है, मगर आवश्यकता से अधिक साफ सफाई की आदत कभी कभी समस्या भी बन जाती है, या यूं कहें ओवर क्लीनिंग की आदत कभी कभी थकान और अवसाद का कारण बन जाती है। घरेलू महिलाएं हों या फिर कामकाजी, ये प्रभाव कई स्तरों पर दिखाई देते हैं, जैसे दिनचर्या पर प्रभाव, शारीरिक मानसिक थकान, तनाव, चिंता, साथ ही नींद और मनोदशा भी प्रभावित होती है, साथ ही परिवार से दूरी भी देखने को मिलती है। अधिक साफ सफाई की वजह से दूसरों को काम ना करने देना या किसी का भी काम ना पसंद आना, इसके अलावा ओवर क्लीनिंग की वजह से सामाजिक अलगाव भी देखने को मिलता है, जैसे समारोह और यात्राओं से बचना क्योंकि घर गंदा ना हो जाए। ऐसी सोच हमारे मन पर हावी हो जाती है और अक्सर तनाव का कारण बनती है। इन आदतों से आत्मविश्वास भी कम होने लगता है, जो कभी सुकून का प्रतीक हुआ करता था वही चिंता का कारण बन जाता है। घर की सफाई को लेकर बच्चों पर भी हम प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे वे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। घर है, घर में लोग हैं तो गंदा तो होगा ही, तो साफ सफाई करें मगर तनाव ना लें। सफाई जब मन की शांति छीनने लगे तब रुक कर जरूर सोचें। घर तभी सुंदर है जब तक उसमें ऊर्जा, प्रेम और संतुलन है। यदि अधिक सफाई की आदत आपको उलझन में डाल रही है तो मनोचिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। साथ ही अधिक समय सफाई को ना देकर परिवार के साथ समय बिताएं, योग, ध्यान, प्राणायाम के लिए भी समय निकालें। घर जीने के लिए होता है, दिखाने के लिए नहीं। थोड़ा बिखराव जीवन का हिस्सा है, विफलता का नहीं। बहनों, साफ सफाई तो बहुत जरूरी होती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, मगर खुद को तनाव देकर नहीं। घर को स्वच्छ सुंदर जरूर बनाएं, मगर अपनों के साथ मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुस्कुराने से मन के नकारात्मक विचार निकल जाते हैं और मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए घर की साफ सफाई के साथ साथ मन की सफाई पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि मन और मकान को समय समय पर साफ करना जरूरी होता है, वरना मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की बातें जमा हो जाती हैं। इसीलिए बहनों, अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, क्योंकि सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर, और तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें और खुश रहें। फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अगली मुलाकात तक के लिए अब अनुमति दीजिए हिमलता खरे को। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ पर्यावरण गीत। पहले सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक के स्वर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा ये गीत। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कुछ पर्यावरण गीत। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं सतीश भूतानी। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है। इनकी आवाज में आज आप सुनेंगे गीत, गजल और भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सतीश भूतानी के गाए हुए कुछ गीत, भजन और गजल। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर बाद।

0: कवि श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: किसी चिड़िया बड़ी उदास कैसे बुझाए अपनी प्यास, बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी, धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत, चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे, बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात, हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल, पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर, नदी ताल में होगा पानी, फिर होगी चूचू की परेशानी, आओ मिलकर पेड़ लगाए, धरती की खुशियां लौटाए।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, जब पेड़ मुस्कुराते हैं तो ऋतुएं गुनगुनाती हैं, और जब नदियां बहती हैं तो जीवन का संगीत सजता है। हरियाली धरती का श्रृंगार है, नदियां उसकी धड़कन और आकाश उसका विस्तार है। प्रकृति का ये अनुपम काव्य जीवन के होठों पर गीत सजाता रहे, इसी कामना के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर सुनिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

छांव में शीतलता है, फूलों की खुशबू में जीवन का उत्सव है। जब वृक्ष खिलखिलाते हैं तब जीवन गुनगुनाता है। नदियों की कलकल, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का मधुर गान, यही तो वो संगीत है जिसके सुरों पर जीवन मुस्कुराता है।

0: Open your mouth.
1: तो श्रोताओं, फूलों की सुगंध, बादलों की छांव और वृक्षों का स्नेह मनुष्य को मिलता रहे, इसी कामना के साथ आइए संकल्प लें कि धरती को हम उतना ही सुंदर बनाकर रखें जितनी सुंदर ये हमें विरासत में मिली है। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में वे 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं शाम को दमन में नामो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और नामो अस्पताल सहित करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे भारत क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत होगा तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में भी पौधरोपण, संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा,
2: आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई। अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति संध्या वंदन दीप प्रज्वलन के साथ, सूर्योदय देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ, अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी घाट पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रायसेन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण किया गया, जबकि गुना में एनसीसी इकाइयों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं सतना के बगहा में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। झाबुआ में सुबह तेज बारिश हुई, जबकि सीहोर, रायसेन और कई अन्य जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने आज भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, श्योपुर सहित 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। केरल में मानसून 4 जून को पहुंच चुका है और प्रदेश में मानसून के 20 से 22 जून तक के बीच दस्तक देने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में मलेरिया निरोधक माह के तहत कल बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है संदेश के साथ एक प्रचार रथ को रवाना किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियंका अनुंगो ने नर्मदापुरम प्रवास के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण तथा बैंक ऋण से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम 3.0 के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 1 जुलाई को होगी। और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए

जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि छोटे तालाब जिनका किसी नदी से कोई संबंध नहीं है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने

0: शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ. मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे। यस, एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ है उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को भी स्टॉल लगा रहे हैं।
6: लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
7: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की।

रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, दोपहर 2:30 का ये वक्त जबकि कुछ फुर्सत जिंदगी चुरा ही लेती है, जी हाँ, तो इन फुर्सत के लम्हों में आइए कुछ सुरीले नगमे आपकी ही फरमाइश पर आप तक भेजते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है सरस्वती चंद्र फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, अनुरोध आप सबका है। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। निम्बोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख, बबन जोशी, शिवाजी चौक बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ, अमोग वाघ। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। और ये खत आया हुआ है सोनवा झारखंड से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदिनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत। खतो किताबत की सदा रस्म को जारी रखना, भूल न जाना हमें, याद हमारी रखना।

आपकी फरमाइश की अगली पेशकश हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता, गौरव और गरिमा शर्मा, नेपानगर से सुदर्शन शाह, ताविश शाह, कुंज शाह, पल्लवी, सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, और ये खत आया हुआ है मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल की ओर से। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं पालकी फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की हैं, गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। छिपाना था तुम्हें पहले ही रोज, अब किया पर्दा तो क्या पर्दा किया।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत बस कुछ ही पलों बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

इस अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है बहू बेगम। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की हैं, बोल साहिर लुधियानवी के और धुन रोशन की। अनुरोध आप सबका है, ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू, ग्राम

कमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर इसी गीत को पसंद करते हैं। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामोरिया। ग्राम सौगा मगरलोड धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। और प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से ये हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं बहु बेगम फिल्म का ये गीत। ता उम्र तेरा इंतजार कर लेंगे मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी

श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें उसके पहले एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024

इसके प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों और आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in और hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई। और अब आइए एक बार फिर गीत संगीत की ओर चलें। आपको सुनवाते हैं हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। कमर कॉलोनी बड़वाह से ये चिट्ठी आई है। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की ओर से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये खत आया हुआ है। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा इसके लिखने वाले हैं। सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणी, पंजाब राव और संदीप पाटिल की ये चिट्ठी है। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही फरमाइश है। बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये चिट्ठी आई हुई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म बॉयफ्रेंड में। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। उनकी नजर की जुम्बिश से बन जाते हैं शोले शबनम, सारी दुनिया भूल गई है, याद करें अब किस किस को हम।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: क्यूँकी चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास, बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी, धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत, चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे, बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात, हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल, पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर, नदी ताल में होगा पानी, फिर होगी चूचू की परेशानी, आओ मिलकर पेड़ लगाए, धरती की खुशियां लौटाए।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में वे 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी के घाट पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी छतरपुर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30, रात 8:35 और रात 9:45। शाम 6:00 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम। खेल जगत कार्यक्रम में रात 9:30 पर आप सुनेंगे नावेद इशरत की वार्ता फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026। आपकी फरमाइश प्रसारण समय रात 10:00 और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबले पर बजाया रूपक ताल। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर किसान भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज किसान भाई सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का निर्धारित क्रम आपकी पाती आपकी फिल्मी गीत। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्ज, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल वेब्स OTT और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5:00 अपनी सांधेकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मंच पर ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ पर्यावरण गीत। कलाकार चंद्रभूषण पाठक, रमेश बाबू सोनी और रामनाथ अहिरवार। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंच गए हैं, जहां वे आज 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। वे आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पौधा लगाया और लार्सन एंड ट्रूबो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से विश्व पर्यावरण दिवस पर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और वन्य जीव हमारे जीवन के आधार हैं। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम 3.0 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। मौसम विभाग ने भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: वार्ताकार हैं अदिति शुक्ला। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अदिति और आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 675 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आज हर युवा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, रील्स की दुनिया जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। यही रील्स की दुनिया का हमारे रियल लाइफ में क्या असर पड़ता है, आज हम बात करेंगे रील्स वर्सेस रियल की। दोस्तों, आज का समय डिजिटल युग का समय है। मोबाइल फोन अब केवल बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया है। सुबह आँख खुलते ही लोग सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं और रात को सोने से पहले आखिरी बार भी मोबाइल ही देखते हैं। इन सब के बीच जो खाली समय मिलता है वो भी मोबाइल देखने में ही चला जाता है। और इस सब में सबसे ज्यादा अगर युवाओं को कोई चीज आकर्षित कर रही है तो वो है सोशल मीडिया रील्स। कुछ सेकंड की छोटी छोटी वीडियोस आज लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। मनोरंजन, फैशन, डांस, कॉमेडी, फिटनेस, शिक्षा, यात्रा, खाना बनाना, हर तरह की जानकारी अब रील्स के माध्यम से ही मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम रील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर रील्स धीरे धीरे हमें नियंत्रित करने लगी हैं? क्या यह केवल मनोरंजन है या फिर हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं? आइए आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्रोताओं, अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो लोगों के पास खाली समय में करने के लिए अलग अलग चीजें हुआ करती थीं। कोई किताबें पढ़ता था, कोई दोस्तों के साथ समय बिताता था, कोई खेल खेलता था या फिर परिवार के साथ बैठकर बातें किया करता था। लेकिन आज की स्थिति काफी बदल गई है। जैसे ही लोगों को खाली समय मिलता है वे तुरंत मोबाइल खोलकर रील्स देखने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि केवल 2 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल गया। यही रील्स की सबसे बड़ी ताकत है। ये वीडियो इतनी तेजी से बदलती है कि हमारा दिमाग लगातार नई चीजें देखने का आदी हो जाता है। वैसे रील्स का सकारात्मक पक्ष भी है। आज बहुत से युवा अपने हुनर को दुनिया के सामने ला पा रहे हैं। छोटे शहरों और गांवों के युवा भी अपनी प्रतिभा दिखाकर पहचान बना रहे हैं। कोई गाना गाकर लोकप्रिय हो रहा है, कोई डांस से लोगों का दिल जीत रहा है, तो कोई शिक्षा से जुड़ी जानकारी देकर दूसरों की मदद कर रहा है। आज कई शिक्षक भी रील्स के माध्यम से कठिन विषयों को आसान भाषा में समझा रहे हैं। फिटनेस ट्रेनर्स स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहे हैं। छोटे व्यवसाय करने वाले लोग अपने काम का प्रचार कर रहे हैं। यानी रील्स केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि रोजगार और अवसर का भी मंच बन चुकी है। कई युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना करियर बनाया है। कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर्स बने, कुछ वीडियो एडिटर्स, तो कुछ डिजिटल मार्केटर्स और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इससे यह साफ है कि अगर सही तरीके का उपयोग किया जाए

0: तो सोशल मीडिया युवाओं के लिए नए अवसर के दरवाजे खोल सकती है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रील्स की दुनिया जितनी आकर्षक दिखाई देती है, वास्तविक जीवन उतना आसान और परफेक्ट नहीं होता। सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों की जिंदगी का केवल एक अच्छा हिस्सा दिखाई देता है। महंगे कपड़े, शानदार होटल्स, घूमना फिरना, लग्जरी गाड़ियाँ, हमेशा खुश रहने वाले चेहरे, ये सब देखकर कई युवाओं को लगता है कि उनकी जिंदगी दूसरों से कम अच्छी है। धीरे धीरे तुलना करने की यह आदत आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि वो दूसरों जितने सफल या सुंदर नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जिंदगी पूरी सच नहीं होती। कैमरे के पीछे का संघर्ष, तनाव और मेहनत भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। आज कई युवा केवल लाइक्स और व्यूज पाने के लिए अपनी असली पहचान बदलने लगे हैं। कुछ लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो केवल लोगों का ध्यान खींचे, और दूसरों की नकल करते करते वो अपनी असली पहचान खोने लगे हैं। दोस्तों, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि अब लोग किसी भी खूबसूरत जगह पर या तो घूमने जाएं या फिर परिवार के साथ बैठें, कैमरा पहले खुल जाता है। धीरे धीरे हम अपने पलों को जीने की जगह उसे रिकॉर्ड करने में ज्यादा व्यस्त हो रहे हैं। इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ रहा है। पहले परिवार के लोग साथ बैठकर बातें किया करते थे, लेकिन अब कई घरों में सभी लोग एक ही कमरे में बैठकर भी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। दोस्ती भी अब ऑनलाइन चैट और इमोजी तक सीमित होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। हर समय फोन चेक करना, नोटिफिकेशन का इंतजार करना और दूसरों से अपनी तुलना करना तनाव और चिंता को बढ़ा सकता है। कई युवाओं में अकेलापन की भावना भी बढ़ रही है। श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि तकनीक हमारे लिए ही बनी है, हम तकनीक के लिए नहीं। मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग तभी तक अच्छा है जब तक वह हमारी जिंदगी को आसान बनाए, ना कि हम पर हावी हो जाए। इसीलिए जरूरी है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग संतुलित तरीके से करें। अगर आप रील्स देखते हैं तो अपने समय की सीमा तय करें। हर समय फोन हाथ में रखने की आदत को कम करें। दिन का कुछ समय मोबाइल के बिना बिताने की कोशिश करें। दोस्तों और परिवारों के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत करें, किताबें पढ़ें, खेल कूद में हिस्सा लें, संगीत सुनें और प्रकृति के बीच में समय बिताएं। अपनी वास्तविक जिंदगी को सोशल मीडिया की दुनिया से ज्यादा महत्व दें। और सबसे जरूरी बात, खुद की तुलना किसी और से मत करिए। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। दोस्तों, रील्स की दुनिया हमें मनोरंजन, जानकारी और अवसर देती है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम उसका उपयोग समझदारी से करें। तकनीक तभी फायदेमंद है जब हमारे नियंत्रण में रहे। हमें डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच सही संतुलन बनाना सीखना होगा, क्योंकि असली खुशियाँ लाइक्स और व्यूज में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए समय, सच्ची दोस्ती, अच्छे स्वास्थ्य और मन की शांति में होती है। तो आइए हम सब भी यह संकल्प लें कि सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, लेकिन उसे अपनी जिंदगियों पर हावी नहीं होने देंगे। रील्स देखेंगे, नई चीजें सीखेंगे, लेकिन अपने वास्तविक जीवन और रिश्तों को कभी नहीं भूलेंगे। इसी संदेश के साथ मैं अदिति आप सभी से विदा लेती हूँ। यह कार्यक्रम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: दोस्तों, अभी हमने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था रील्स बनाम रियल और हमारा युवा, जिसमें वार्ताकार थी अदिति शुक्ला। आइए साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है प्राकृतिक खेती। यह खेती रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और

बाहरी आदानों यानी इनपुट्स पर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक कचरे और प्राकृतिक पोषक तत्वों का उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीवों को पुनर्जीवित करना है। इसमें फसलों की वृद्धि और कीट नियंत्रण के लिए गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन से बने जीवामृत तथा बीजामृत का प्रयोग होता है। यह प्राकृतिक दृष्टिकोण किसानों की खेती की लागत को लगभग शून्य कर देता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। यह विधि पर्यावरण के अनुकूल है, जो भूमिगत जल को प्रदूषित होने से बचाती है और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। खेत की नमी को बनाए रखने और खरपतवार को रोकने के लिए मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों से ढकने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, जिसमें वर्षा जल का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। प्राकृतिक तरीके से उगाई गई उपज रसायन मुक्त, पौष्टिक और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इसमें कम से कम जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और केंचुए जैसे मित्र जीवों को नुकसान नहीं पहुंचता। इसमें मुख्य फसल के साथ अन्य सहायक फसलें और पेड़ भी उगाए जाते हैं, जो मिट्टी की नाइट्रोजन क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा प्राकृतिक खेती पर। आइए श्रोताओं, आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म रश से, जिसके गायक थे ऐश किंग, मुअज्जम और रिजवान अली खान, जिसके गीतकार थे आशीष पंडित और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है गांव के विकास में युवाओं की भूमिका। युवा किसान वैज्ञानिक तरीकों, जैविक खेती और ड्रम सीडर या ट्रैक्टर जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। गांव में युवाओं द्वारा ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं जैसे आधार अपडेट, बिल भुगतान के बारे में जागरूक किया जा सकता है। शिक्षित युवा अपने गांव के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन और मार्गदर्शन देकर शिक्षा का स्तर ऊपर उठा सकते हैं और ड्रॉप आउट दर को कम कर सकते हैं। युवा बढ़ईगिरी, सिलाई, कंप्यूटर जैसे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके अन्य ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। युवा स्वच्छता अभियान चलाकर शौचालय निर्माण को प्रेरित करके और स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर गाँव को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त गांव का अभियान चलाकर युवा पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। स्थानीय उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, शहद, अचार को ऑनलाइन माध्यमों और सोशल मीडिया से जोड़कर युवा उन्हें उचित बाजार दिला सकते हैं। गांव में खेल के मैदानों का विकास करके और टूर्नामेंट आयोजित कर युवा पीढ़ी को नशे और गलत आदतों से दूर रखा जा सकता है। युवा ग्राम पंचायत और सरकारी अधिकारियों के बीच की कड़ी बनकर ग्रामीणों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं। युवा वर्ग बाल विवाह, दहेज प्रथा और लिंग भेद जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट के समय युवा दल वॉलंटियर के रूप में आगे आकर गांव की सुरक्षा और राहत कार्यों में भी अहम योगदान दे सकते हैं। कुछ इन कार्यों के द्वारा गांव के विकास में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन सकती है। युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी गांव के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर। आइए अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी हमने ये जो गीत सुना ये था फिल्म बॉबी से, जिसमें आवाज़ थी शैलेंद्र सिंह की, जिसके गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए साथियों, अब आपको दे देते हैं रोजगार सूचना भी। SSC CGL यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है ग्रुप बी एंड सी। पदों की संख्या है 12,256, जिसमें आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.ssc.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम हरे को। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक का ये गीत। शंकर महादेवन और अलाइजा मेंडोंजा की आवाज़ें हैं। जावेद अख्तर का लिखा यह गीत, जिसे संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म लव आजकल से। इरशाद कामिल के लिखे बोल प्रीतम का संगीत और आवाजें हैं मास्टर सलीम, नीरज श्रीधर और सूजी क्यूकी।

वाजिद, ममता शर्मा और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दबंग 2 से। समीर अंजान के लिखे बोल और साजिद वाजिद का संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। आइए सुनते हैं फिल्म बर्फी से। श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज़ें हैं। स्वानंद किरकिरे की शब्द रचना और इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

मोहित चौहान की आवाज़ में सुना आपने इरशाद कामिल का लिखा ये गीत फिल्म रॉकस्टार से। इस गीत को संगीत दिया था एआर रहमान ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है और गैस सप्लाई चेन चरमरा रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों की साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से सामना कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास को पर्यावरणीय संवेदनशीलता और दीर्घकालिक सतत विकास की अवधारणा के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आधुनिक सड़क एवं परिवहन नेटवर्क के निर्माण के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देना है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई माह में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद यह वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन अगले महीने की 31 तारीख तक खुले रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं, वे केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और इनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दुहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से

0: सीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेत ही हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
0: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
0: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
0: जी,
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
0: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
0: क्या बात है!
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है! श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
0: जी।
1: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
0: जी,
1: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी,
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: कोई ना कोई वजह होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है।
3: अच्छी बारी तो बहुत अच्छा है।
4: महाराज की
3: बहुत अच्छे से शासन करी।
2: खास ऐलान।
1: शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
5: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
2: जी महाराज, बहुत
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
10: हो? मुझे भी ऐसा हो

0: सबको नकली मिला है। हाँ। तुम भी नकली, तुम
1: कैसे
0: आया था?
1: नकली ही ना दे सकता,
0: नकली कैसे हो गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
2: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
3: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें। महाराज
2: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
3: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जोहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
2: क्या? और कोई शंका?
3: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
2: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
4: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
5: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हां, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
7: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलग रूम में चल चल।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद

मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
2: नमस्कार।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है विश्व पर्यावरण दिवस पर पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसी विषय पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ये दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि आत्म मंथन का अवसर है। हमारी प्रकृति कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि हम उससे जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, इस बार का विषय जलवायु पर केंद्रित है, प्रकृति की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा राजधानी भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में पर्यावरण संरक्षण और हरित वातावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने को लेकर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे से हुई, जहां पर उपस्थित अतिथियों साथ ही भोपाल की प्रथम नागरिक माननीय महापौर श्रीमती मालती राय ने भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के प्रांगण में पौधारोपण किया। पौधारोपण

0: बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। हमारी प्रकृति कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि हम उससे जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, इस बार का विषय जलवायु पर केंद्रित है, प्रकृति की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा राजधानी भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में पर्यावरण संरक्षण और हरित वातावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने को लेकर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे से हुई, जहां पर उपस्थित अतिथियों साथ ही भोपाल की प्रथम नागरिक माननीय महापौर श्रीमती मालती राय ने भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के प्रांगण में पौधारोपण किया। पौधारोपण के संबंध में हमें जानकारी दी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के मीडिया ऑफिसर मोहम्मद रेहान ने।
1: आज आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून, और ये दिवस हम सबको ये याद दिलाता है कि हमें जागरूक रहना चाहिए अपने पर्यावरण के प्रति, क्योंकि पर्यावरण आज एक ऐसी विश्व की समस्या है कि जो भविष्य के लिए अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ देना है, अगर उनको अच्छी हवा और अच्छा पानी और अच्छा पर्यावरण देना है, तो आज हमें जागरूक होना पड़ेगा। और इसी जागरूकता के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अपना कार्य कर रहा है, और प्रत्येक वर्ष मानव संग्रहालय पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। PIB और मानव संग्रहालय के सहयोग से आज हमने अभी पौधारोपण का कार्य किया, और इसमें हमने लगभग 100 पौधे लगाए हैं मानव संग्रहालय में सबने मिलकर, और इसके पश्चात दिन भर और भी कार्यक्रम चलेंगे।
0: सर, जो पौधे लगाए हैं वो किस किस्म के पौधे?
1: बहुत अच्छा सवाल है। पौधे हम ऐसे चुनते हैं, लगाते हैं जो पर्यावरण के प्रति जो है जो साफ हवा दें। इसमें पीपल बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है, नीम, करंज का पेड़ लगाया है, जामुन का पेड़ है, बरगद के पेड़ हैं, और इसी तरीके से हमने और भी जो ऐसे पौधे जो पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, इस तरीके के पौधे हमने यहाँ पर आरोपित किए हैं।
0: इसके बाद अगले चरण में विषय विशेषज्ञों के साथ में पर्यावरण पर केंद्रित वार्ता हुई। वार्ता के संबंध में जानकारी हमसे साझा की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के PRO श्री हेमंत सिंह परिहार ने।
2: ऑल इंडिया रेडियो को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। ये पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पिछले कई वर्षों से इस पर्यावरण दिवस को बृहद स्तर पर मनाता है। इस बार भी हम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के सहयोग से इस कार्यक्रम को यहाँ किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर नगर निगम श्रीमती मालती राय ने सुबह वृक्षारोपण कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके साथ ही आज कार्यक्रम में जो मनीष गौतम जी डायरेक्टर PIB हैं वो थे, पराग मांडले जी असिस्टेंट डायरेक्टर, आकाश उपाध्याय जी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जो विशिष्ट अतिथि जो आए थे, जो पर्यावरणविद हैं, जो इस विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी, डॉक्टर योगेश दुबे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रोफेसर हैं, उन्होंने दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण के ऊपर अपनी बात रखी। वो पर्यावरण वित्त तो हैं ही, लेकिन उनका कहना है कि पर्यावरण के बारे में जितनी भी बातें सेमिनार में संगोष्ठियों में बोली जाती हैं, उन बातों को लोग अपने जीवन में यदि अमल में लाएं तो पर्यावरण का ज़्यादा संरक्षण होगा। वो खुद बताते हैं कि आपको अपने दैनिक जीवन में कम से कम एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, प्लास्टिक का तो उपयोग न के समान करना चाहिए, इवन खाने में भी वही चीज़ खानी चाहिए जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो वो प्रैक्टिकल पर्यावरणविद हैं, तो उनकी बातों के लोगों ने अनुसरण किया, और कार्यक्रम के अंत में उनके द्वारा एक शपथ भी दिलाई गई कि आज एक हम शपथ लें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए हम काम करेंगे, हम जल का संरक्षण करेंगे, हम पानी को बचाएंगे। प्रोफेसर दुबे का कहना था कि लोग, कई सारे लोग एक मोबाइल एक साल रखते हैं, दूसरा मॉडल आ जाता दूसरा ले लेते हैं, कई सारी चीज़ें अनावश्यक रूप से खरीदते रहते हैं। केवल जरूरत के अनुसार ही चीज़ों का उपयोग करें, न कि अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करें, ये विशेष बात आज आई। उसके साथ ही डॉक्टर मीना अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर मैनेट कॉलेज भोपाल, उन्होंने ऊर्जा संरक्षण से और पर्यावरण संबंधन के ऊपर बात करी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा का संरक्षण कैसे करना है, ऊर्जा को कैसे बचाना, उसके ऊपर कई सारी टिप्स उन्होंने दी। साथ ही प्रोफेसर गिरीश जोशी जो कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से आए थे, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में आज की क्या जरूरत है उसके ऊपर प्रकाश डाला। साथ ही प्रोफेसर तरुण सेन जो कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने जागरूकता कार्यक्रमों में सोशल मीडिया की भूमिका के ऊपर जवाब डाला। लोग सोशल मीडिया का यूज तो करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का यदि सार्थक यूज करें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, उससे भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। और मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर अमिताभ पांडे ने भी अपनी शुभकामनाएं आज के दिन सभी लोगों को दी, और चूंकि वो आज श्रीनगर में एक बड़े प्रोग्राम में जुड़े हुए थे तो वहां से लगातार कार्यक्रम की फीडबैक ले रहे थे, और हमारे बीच में जितने भी लोग आए, जितने भी पत्रकार आए, सभी ने इस प्रोग्राम को बहुत सार्थक बताया। तो मैं पुनः आप सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और एक संदेश देना चाहूंगा कि

0: जल है तो जीवन है और जल है तो कल है, तो जल को बचाने का प्रयास करें।
1: अतिथियों से हमने जाने उनके विचार पर्यावरण संरक्षण को लेकर। सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण के लिए हमारे साथ में है
2: मैसेल डॉक्टर नीना अग्रवाल। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर एट मैनेज भोपाल इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग।
1: किस तरह से ऊर्जा संरक्षण किया जाना चाहिए, क्यों जरूरी है?
2: ऊर्जा संरक्षण आज तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस से हम आज नहीं, बहुत पहले से भी, 1971 का जो ऑयल क्राइसिस आया, वहां से हम सबको पता लगा कि भाई एनर्जी के रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो फिर हमको एनर्जी तो सेव करना ही पड़ेगा, कंजर्व तो करना ही पड़ेगा, और हमेशा ही डिमांड तो बढ़ती जा रही है, अभी एवर इंक्रीजिंग डिमांड है, एंड आवर सोर्सेज के नॉट उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संसाधन जो है, एनर्जी रिसोर्सेज जो है, वो तो सीमित ही है, लिमिटेड है, कुछ रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे अभी 50 साल में, कुछ रिसोर्सेज 100 साल में, तो इसलिए हम लोग नए नए संसाधनों का खोज करते हैं, एक तरफ ऊर्जा के लिए कि जिससे ऊर्जा की जो डिमांड है वो पूरी हो सके, बट हमको साथ साथ मैनेज करना भी जरूरी है, कंजर्व करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे हम ऊर्जा को बचाएंगे तो फिर हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कंजर्वेशन का एक ही रहता है कि भाई आपका कंफर्ट से हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कंफर्ट तो रहे बट विद अवेयरनेस रहे, यूटिलाइज तो करना है बट मिसयूज नहीं करना है, तो इसलिए कंजर्व करें, जितना हम बचत कर सकते हैं बचत करें, तभी हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा पाएंगे। सस्टेनेबल लिविंग की बहुत जरूरत है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, अदरवाइज हमारे पृथ्वी पे कुछ बचेगा ही नहीं, हमें लोग सब खत्म कर देंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए ऊर्जा संरक्षण हर तरीके से आवश्यक है।
1: केंद्र सरकार की हरित वसुंधरा को लेकर क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं
3: पराग मांडले, असिस्टेंट डायरेक्टर केंद्रीय संचार ब्यूरो भोपाल। आज यहाँ पर पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा किया गया। इसमें पर्यावरण से जुड़ी हुई केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी भी जानकारी दी गई। उनमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि ग्रीन इंडिया मिशन है, इसके अलावा नगर वन योजनाएं हैं, जो शहरों में एक छोटा सा वन या ऑक्सीजन सेंटर तैयार करने का हम कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से, उस तरह की यह योजना है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में 94 जगहों पर इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा जन अभियान है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, वो एक पेड़ माँ के नाम का है, जो 2024 में शुरू किया गया था, और इसमें अब तक जो है कम से कम 263 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नमामि गंगे परियोजना जो है वो शुरू की गई है। इसके अलावा नदियों में जो सीवेज का पानी जाता है तो वो शुद्ध होकर परिष्कृत होकर जाए, उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अलग अलग नदियों के बनाए जा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत भी अभी तक 138 STP जो है वो पूरे हो चुके हैं और टोटल 218 STP पर काम चल रहा है। इसके अलावा जो वेटलैंड होता है आर्द्र भूमि, उसके संरक्षण के लिए और उसी के साथ में मैंग्रोव के संरक्षण के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा जो हमारे वन्य जीव हैं जो या तो विलुप्त तो हो चुके हैं या विलुप्त तो हो रहे हैं, तो उनके संरक्षण के लिए भी अलग अलग योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई है। उसमें से जो सबसे चर्चित योजना हम सब जानते हैं कि जो चीता है जो हमारे यहाँ से खत्म हो चुका था पूरी तरह से, तो उसको वापस लाने के लिए यह पहला ऐसा योजना थी कि किसी जंगली मांसाहारी पशु का स्थानांतरण अंतर महाद्वीपीय स्तर पर किया गया हो, तो उसमें दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से और बोत्सवाना से चीते लाए गए थे और अब धीरे धीरे उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी तरह से प्रोजेक्ट टाइगर में भी लगातार बाघ अभयारण्यों को बढ़ाने और साथ में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए भी काम चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन लाइफ जैसे प्रोग्राम भी चला रहे हैं, तो कुल मिला के हर स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण भी हो और संवर्धन भी हो, इसके लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है।
1: हमारी भारतीय संस्कृति में किस तरह से पर्यावरण को जोड़ा गया है, जिसे आमजन पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए, बता रहे हैं।
4: मैं गिरीश जोशी हूं, मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव के पद पर काम करता हूं। नमस्कार सभी को, और आज पर्यावरण दिवस है। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण ये विषय इतना पुराना है जिसकी कल्पना आज की पीढ़ी को नहीं हो सकती। दरअसल हमारे माना गया कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीयान, मतलब ये पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं या पुत्री हूं। चूंकि हमारा लालन पालन पोषण यही होता है, हम जो भी भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, यानी हमारे पोषण के लिए जो आवश्यक होता है सब धरती देती है, इसलिए अपनी जन्मदात्री मां के बाद उसको हमने महत्व दिया। उसके जो अंग है, जैसे नदी है, पहाड़ है, वृक्ष है, उन सबके प्रति

0: नहीं, फिर हमारी भावना बदल जाती है। भाव हमारे संस्कृति में डाला गया, इसीलिए डाला गया था मुझे लगता है, ताकि हम जो अपरोक्ष रूप से जो पर्यावरण संरक्षण का विषय है ये हमारे प्रैक्टिस में इजीली आ जाए। हमारे बुजुर्ग हमको सिखाते थे कि उठते से ही अगर धरती पर भी पैर रख रहे हैं तो हम एक श्लोक कहा करते थे, मैं उठा हूँ और मैं पैर आप पे रखने जा रहा हूँ, मैं इस गलती के लिए आपसे पहले से ही क्षमा याचना करता हूँ। यहाँ से हमारा पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा शुरू होता था। फिर हम जब बाहर निकलते थे, भगवान सूर्य को देखते थे, तो सूर्य को अर्घ देने की हमारे यहाँ परंपरा थी, दीपदान की हमारे यहाँ परंपरा थी। बट इस पर्यावरण में हर चीज के प्रति हमारे भीतर श्रद्धा का भाव पैदा किया गया, आचरण में लाया गया, क्योंकि हम लोग भारतीय लोग सामान्य रूप से बड़े भाव प्रधान होते हैं और हमारी भावना जो है वो धार्मिकता से ज्यादा जल्दी कनेक्ट होती है। तो उन भावनाओं के आधार पर हर प्रैक्टिसेस को, जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप देखें जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को ही एड्रेस करती थी, उसी से जोड़ा गया था। इसलिए आप देखेंगे एक हमारे ऋग्वेद में श्लोक है, देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांति रेव शांति। हम अगर ऋग्वेद ग्रंथ को 5000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के लिए कितनी बड़ी बात कही गई थी। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, वृक्षारोपण का महत्व कितना बड़ा बताया गया था हमारे यहाँ शास्त्रों में। मत्स्य पुराण में एक श्लोक है, 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक झील होती है और 10 झीलों के बराबर एक पुत्र होता है और ऐसे 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। तो हमारे वृक्ष की महिमा इतनी बड़ी बताई गई है। तो वृक्षारोपण की महिमा क्या है ये हम अपने संस्कृति से इसको समझ सकते हैं। हम सब लोग जो बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं उनसे बने हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लेकिन इन पांचों तत्वों का किस तरह से समन्वय करना, सारे आयाम हमारी संस्कृति में समाहित कर दिए गए थे। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, ग्लोबलाइजेशन के पहले या वाहनों के आने के पहले किसी प्रकार के प्रदूषण की समस्या न होने के बाद ही पर्यावरण की चिंता हम करते थे, लेकिन आज जब इतना बड़ा विषय आ गया है इसलिए दुनिया के लोग अब भारत की तरफ देख रहे हैं, उसको आचरण में लाए, जो धीरे धीरे अभी आचरण से दूर होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम एक बेहतर मार्ग दुनिया को बता सकते हैं।
1: इस पूरे आयोजन को लेकर पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक श्री मनीष गौतम का मानना है,
2: विश्व पर्यावरण दिवस में महत्वपूर्ण रूप से उन नीतियों की चर्चा की गई है, उन मिशंस की चर्चा की गई है जिसको कि केंद्र सरकार के नीति आयोग ने मान्यता दे रखी है। नीति आयोग की मानना है कि जब तक लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक बिहेवियरल चेंज नहीं लाएंगे, लोग अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक पर्यावरण सुधार या संरक्षण कहीं सिर्फ कार्यक्रम तक सीमित होकर नहीं रह जाए। तो अब ये पर्यावरण संरक्षण सिर्फ हमारा अधिकार या हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि अब ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है। आज का जो प्रमुख वार्ता का जो आउटकम है वो सिर्फ इतना ही रहा कि अब हम पर्यावरण को अपने स्वास्थ्य से जोड़ेंगे, पर्यावरण को अपने व्यवहार से जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पर्यावरण अब हमारी जिम्मेदारी के रूप में सामने आए, न कि केवल सिर्फ अधिकार के रूप में कार्यक्रमों तक सीमित रहे। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि निश्चित रूप से इसके जो परिणाम है वो प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पूरे देश का ग्रीन कवर बढ़ा है, तो ग्रीन कवर बढ़ाने की तरफ जो सरकार का प्रयास है इसमें अगर जनता का सहयोग मिल जाए तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पेड़ जितने कट रहे हैं उससे कहीं अधिक संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं जो कि बड़े हो रहे हैं। और एक बात और तथ्य वो यह था कि सिर्फ वृक्ष लगाए नहीं जाएंगे बल्कि उनको संरक्षित या उनको सुरक्षित रखने का भी प्रयास करेंगे लोग, ताकि वृक्ष आगे बढ़े, और यही संदेश है।
1: सर, PIB का ये जो आयोजन रहा है ये कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं आज के दिन?
2: देखिए, PIB अपने नियमित कार्यक्रमों की श्रृंखला में वार्ता और वार्तालाप अलग अलग जगहों पर जाके करती है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम भोपाल में रखा और मध्य प्रदेश के लगभग आधे से अधिक जिलों में पहुंचकर हमारे यहाँ से वार्तालाप के कार्यक्रम हो गए, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं, उसकी प्रमुख अधिनियम, उसकी उपलब्धियों, उसकी जानकारी जो आम जनता तक हम लोग मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज होता है जनता और सरकार के बीच में। तो मीडिया के लोगों को शामिल करके ही ये पूरी एक्सरसाइज की जाती है, वार्तालाप किया जाता है, ताकि उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ ये सारी जानकारी जो है वो आम जनता तक पहुंच सके। तो उसमें वही कार्य PIB ने आज भी किया।
1: सर, जो गेस्ट आए उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
2: जो गेस्ट बुलाए गए थे वो अपने अपने विषयों में स्किल्ड थे, मास्टर थे और उनकी भरपूर जानकारी थी, उन्होंने उस फील्ड में बहुत गहराई साथ काम किया। तो जिनका फील्ड में काम होता है, चाहे वो अभ्यारण्यों में काम किया हो, चाहे वो गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास काम किया हो या फॉरेन गए हो, इन लोगों की जो पहुंच, जो समझ है वो उनकी विशेषज्ञता के रूप में आज मीडिया के साथ में कनेक्ट होती हुई दिखाई पड़ी। तो जो उनके आउटकम थे, जो उन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली, जो उन्होंने अपने फीडबैक दिए, अपनी बात रखी, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को जरूर श्रेयस्कर लगेंगे और इसका प्रभाव भी कुछ दिनों बाद दिखाई पड़ेगा।
1: श्रोताओं, इस तरह से ये आयोजन संपन्न हुआ और इससे कुछ बातें जो निकल कर सामने आई हैं वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम खुद से ही शुरुआत करें, जिससे धरती बची रहे और हरियाली भी बनी रहे। इसी के साथ इस रेडियो रिपोर्ट को संपन्न करते हैं। आज्ञा दीजिए जूही राव को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म दम लगा के हईशा से। मोनाली ठाकुर की आवाज, वरुण ग्रोवर की शब्द रचना और अनु मलिक का संगीत।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कुर्बान से। निरंजन अयंगर के बोल और सलीम सुलेमान का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। श्रोताओं, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए ये सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटेस्ट आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि

0: ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मेगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। अब से कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। रात्रि 8 सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष महिला सशक्तिकरण। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:35 और 9:45 पर। कार्यक्रम खेल जगत आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10 सुनिए पीएम मोदी के 12 साल पर विशेष कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे रूपक ताल पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबलावादन 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी शनिवार 6 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे बीना ठाकुर और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान लोक और फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 9:45 पर। सुबह 10:05 पर सुनिए फिल्म में गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत सागर और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे तोड़ी राग पर कादिर खान का सारंगी वादन 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

सुबह 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12 बजे और दोपहर 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार का पहला अंक आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे, शाम 5:33, 6:30 और 8:35 पर। शाम 6 बजे सुनिए आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर डॉक्टर C.R. मेहता से विशेष भेंटवार्ता। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण 7:21 पर किया जाएगा। शाम 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8 बजे सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति। कार्यक्रम साहित्य भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।

और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में ऋषिकेश गंगुरड़े का ख्याल गायन सुनिए रात्रि 10 बजे। इसका प्रसारण भी आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे कल यानी 6 जून 2026 शनिवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में पौधा लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ। और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत पहुंचे श्री मोदी ने कहा कि गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा में कई साल पहले ही बड़े कदम उठा लिए थे और देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क भी यहीं के पाटन जिले में लगाया गया था।
3: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारण का गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
2: सूरत के बाद श्री मोदी दमन भी जाएंगे, जहां करीब 2009

0: 470 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा वे लक्षद्वीप के लिए कई अहम समुद्री परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। इस लेख में श्री यादव ने पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जनभागीदारी की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्यस्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। डॉ यादव ने भोपाल स्थित अपेक्स बैंक परिसर में हरित सहकार अभियान की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कोलारस की चीनी फैक्ट्री को दोबारा चालू करने और किसानों को MSP से अधिक दाम दिलाने का ऐलान भी किया।
1: हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शकर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही। एक नहीं दो दो लगाएंगे। आप गन्ना भी लगाओ और अब तो पार्वती कालीसिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है।
0: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में माचना नदी के घाट पर पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में वन विभाग परिसर में वृहद पौधरोपण किया गया। वहीं बुरहानपुर के शाहपुर में नगर परिषद ने 2000 से अधिक पौधे लगाए, जबकि रायसेन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ग्रामीणों से खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाने की अपील की। गुना में NCC ने जागरूकता रैली निकाली और सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन ने पौधरोपण किया। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताए गए। वहीं देवास, अशोकनगर, इंदौर, शिवपुरी और धार में भी जिला प्रशासन की अगुवाई में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अगले महीने की 31 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला के ऐतिहासिक पुष्पबंता पैलेस को हेरिटेज होटल में बदलने की परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह और पूर्व राजघराने के सदस्य प्रद्योत विक्रम माणिक्य भी मौजूद रहे। इस परियोजना से त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को नई गति मिलेगी। बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। वृद्धाश्रमों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर और सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवाओं और बुजुर्गों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए अंतर पीढ़ी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। डिंडौरी के पाटनगढ़ गांव के गोंडी चित्रकारों की कला अब अमेजन ई कारीगर प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर तक पहुंचेगी। इसके लिए आजीविका ग्राम संगठन और डॉट्स एंड डैशेस संस्था के बीच MOU साइन किया गया है। गांव के 157 परिवार सीधे इस कला से जुड़े हैं, जिसमें 85 महिला और 72 पुरुष कलाकार शामिल हैं। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस कला को GI टैग दिलाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भोपाल में बाल कल्याण समिति के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 134 प्रतिभागी 4 बैचों में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, मिशन वात्सल्य योजना और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। रायसेन जिले के सेमरी गांव की बेटी अंजना यादव ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अद्भुत उपलब्धि के लिए अंजना को बधाई दी और उनके हौसले की तारीफ की। इंदौर में 9 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। इस सम्मेलन में इंदौर को वैश्विक स्तर पर अपनी कृषि और नवाचार उपलब्धियां प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ऐसे छोटे तालाब जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा 2 दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन 6 और 7 जून को देवास में किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने आज जिले में खाद वितरण व्यवस्था, ई टोकन प्रणाली और जैविक खेती को बढ़ावा देने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और झाबुआ में 7 जून को समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में लगाया पौधा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम चौपाल के सभी सुनैयन का राधा बहिनी के राम राम भैया बहिनी जो मलिमास न लाग हो त या महीना असाढ़ कहावत देखी नौ तपा दुई रोज लगे भा रहा तब ऐसे दयु महाराज के रंग ढंग बदल गया रहा मानो नौ तपा जौन मेर के तपई का चाही ओह मेर से नहीं तपा इया कहो न कहो आबे वाली बरखा के नीता निकाह संकेत न हो देखी बरखा कमजोर पड़ जाई खेतन का नुकसान पहुंचावे वाले कीट पतिंगन केर बढ़ोतरी हुई जाई मौसम एह मेर के करबट लेत है कि कुछ कहा नहीं जा सके मौसम हर मेर से हमही पाचिन का मार मारे पर हवे और इया दयु महाराज के दोष बिल्कुल नहीं देखा है हम पांचे जौन सरग महोरा भूंजे हैं ना ओही के परिणाम आए जंगल पहाड़ रही नहीं गे अपने नफा मुनाफा के खातिर मनई पेड़ पौधन के आधा धुंध दोहन की बड़ी बड़ी फैक्ट्री उहां लग गई जहां कबो पेड़ पौधा म बैठ के चिरैन के कलरब सुनात रहा है पुरनिया सुध करी जब हम पांचे स्कूल जात रहन गैल के किनारे बड़े बड़े पेड़ रहा करत रहे उहो फलदार पेड़ उन्हीं के छाया होई के मनई खेलत कूदत फल खात कब स्कूल पहुंच जात रहा पता नहीं चलत रहा अब उई सब जागह बीरान हुई गई बड़े सकारे मुर्गा के बोली सुनाए त नींद खुल जात रही चार बजे भोर मा चुहचुहिया बोले लागत रही हमापचिन के दादी नानी हरे आवाज सुन के उच बैठत रही अब अपने अपने काम बूत मा लग जात रही ई सब अब दुर्लभ हुई गे कोरोना जैसा महामारी के समय मनई देखबे भा कि ऑक्सीजन के कितनी किल्लत भय रही हवे यह पेड़ पौधा होते त ऑक्सीजन के कमी न परत देखी जौन प्राकृतिक रूप से हमही पाचन का मुफ्त मा मिल रहा हवे ओह कहती ध्यान न दई के पैसा रुपया से मिले वाली चीजन कहती मनी भागम भाग मचाए है कोरोना जैसा महामारी से मनी सीख नहीं लेनी देखी मनई आए दिना प्रकृति के साथ खेलवाड़ कई रहा हवे धरती मैया के सिंगार पेड़ पौधा आही कहा था मना कि पहरी ओढ़ी मेहरिया और पोती लिपि डेहरिया बहुत नीक लगती हैं तो धरती माता के सिंगार सब उजड़ीगा धरती मैया बंजर दिखाए लागी देखी धरती मैया बहस नहीं करती समझौता नहीं करती सिर्फ उई भयंकर संकेत पठौती हैं जैसन की बाढ़त समुद्र स्तर भयंकर जंगल में आगी पिघलत ग्लेशियर दशकन से दुनिया जलवायु परिवर्तन के कहानी सुनत आ रही हवे चेतावनी लक्ष्य दूरी के समय सीमा पर अक्सर प्रतिक्रिया शोरगुल से घिरी रहती हैं हाँ भैया बहनी ध्यान से सुनी शोरगुल के बीच एक ठे और संकेत उभर रहा है छतन में सौर पैनल लगे हम पवन टर्बाइन मनई दिख रहा है सहरन का लोगन के निता नबा रूप दिन जाय रहा है जंगलन का फेर से लगावा जाय रहा है जलवायु परिवर्तन के समाधान धरती के हर कोने में जड़ पकड़ रही है देखी 2026 जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित हवे भैया बहनी हर बरिस 5 जून का पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनावत है या दिना लोगन का पर्यावरण के प्रति जागरूक करे और पृथ्वी का सुरक्षित राखे के निता प्रेरित करे के एक वैश्विक अभियान आए बढ़त प्रदूषण जलवायु परिवर्तन जंगल के कटाई प्लास्टिक कचरा जैसन चुनौती के बीच या दिवस के महत्व पहले से कहूं अधिक बढ़ी गहा है विश्व पर्यावरण दिवस के शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संबंधी मुद्दन में वैश्विक जागरूकता फैलामे के उद्देश्य से किन गहावे या दुनिया के आज सबसे बड़ी पर्यावरणीय अभियान में से एक बन चुका है जेमा 150 से अधिक देश के लोग भाग ले थमा हर बरिस एक नवा विषय और मेजबान देश के साथ यह दिवस मनावा जात है जौने कौनो विशेष पर्यावरणीय समस्या पर वैश्विक ध्यान केंद्रित किन जा सके आज एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनावागा यह बेर के विषय रहा प्लास्टिक प्रदूषण जैसन गंभीर समस्या
जो उन समुद्र, नदी, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य तक का प्रभावित कर रही है। हाँ भैया बहनी, देखिए प्लास्टिक के चीज के उपयोग बिल्कुल न करे के चाहिए। प्लास्टिक के पन्नी में बिल्कुल रोक लगी है, फेरो चोरी छुपे लोग उपयोग बराबर कर रहे हैं। अपना एक ठे पन्नी का भूई के नीचे दबा दी, एक बरिस के बाद वही खोदी के निकारी, जस के तस से पन्नी व जगह में मिली और उतनी भूई का बंजर कह दे थी वह कौनो अवसरपात करी। प्लास्टिक के बर्तन के उपयोग न करी, पतरी दोना जौन पत्ता केर बना थमा ओकर उपयोग करी, और जो प्लास्टिक के उपयोग करी तो वही एक बड़ा का गड्ढा में डारी, फिर ओहमा आगी लगाई, मुहे अकाने का निकाह से कपड़ा से बांधे रही। ओसे निकरे वाली नुकसानदायक गैस कितना नुकसान करत है, पर्यावरण का प्रदूषण करे मा सबसे बड़ा हाथ प्लास्टिक केर हवे। मने काज बियाह करत है, 50,000 के पड़ाका खरीद के जरा देत है, ओसे कितना वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होत है अनुमान नहीं लगावा जा सके। पैसा ता आगी लगते है, दिखावा के चक्कर मा आज के समय मा मने बौरान असहब है। पेड़ पौधा लगावे का को कहा है, काटी काटी ढहाय दीनहीन। हर घरे में एसी कूलर पंखा चली रहे हमा, एसी से निकरे वाला हानिकारक गैस जौन वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनत है, वह मानव शरीर का कमजोर किन्हे परा है। गर्मी मने बर्दाश्त नहीं किन्हे पावता है। ग्लोबल वार्मिंग जैसा अंग्रेजी शब्द मने समझेगा पर यह समझे का तैयार नहीं आ कि यह होत कैसन की है। हाँ भैया बहनी, अपने पर्यावरण का बेहतर बनावे के लाने सबसे पहले अपन मुख्य जरूरत जल का प्रदूषण से बचाई। कल कारखाना के गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, नाली से बहाय वाले मल, सीवर लाइन के गंदा पानी के निकास नजदीक के नदी और समुद्र में गिरे से रोके का परी। पेड़ पौधा का काटे से बचावे का परी। भारी मात्रा में पेड़ लगाई, वन का नष्ट होए से बचाई। हर दफ्तर में कंप्यूटर से काम कीने से कागज के खपत ना के बराबर हुई जाई, एक के वजह से कागज के इस्तेमाल कम हुई। अब पेड़ पौधा कटे से बची ही। वाहन के उपयोग कम करी, बहुत जरूरी हो तबे वाहन निकारी। वाहन से निकले वाले धुआं से वायु प्रदूषण होत है। खाना बनावे के लाने लकड़ी कंडा केर उपयोग कम करी, एके धुआं से पर्यावरण में प्रदूषण के खतरा बढ़ जात है। हाँ भैया बहनी, अबहिनो समय है चेत ले, नहीं तो कहावत सुने हैं ना कि मचिका ढेला हाथे नहीं आवे, तो समय का पकड़ के चली। अपने पर्यावरण के बारे में सोची, देखी मेर मेर के बिरामी बगरी हैं, जौने के मने नाव तक नहीं जाने, घरी में घोड़ छूट रहे हैं, कोहो के जिंदगी के भरोसा नहीं आए, छोट छोट बिरामी जर बुखार अब कोहो का सुनबे में नहीं आवे, का यह सब देखी एहिन के नतीजा आए। आई सबको मिलजुल के अपने पर्यावरण के संतुलन बनावे मा आपन आपन सहभागिता निभाई, या न सोची कि हम काहे का करी। अरे कोहुता अगुआ होई, फिर देखी अपना के देखा सीखी, लोगन के लंबी लाइन लग जाई, ता सोची जागी मनई बहुत सही चुका अब न सही। देखी कौनो दिवस आकि सप्ताह मनाओ तबे सार्थक होई, जब सबको कदम से कदम मिलाए के चलब। बरबत कहाँ देखी अबे औरो करब, पे एके पहले बरबत कहाँ और करब, पे अब अपना पंचन के मन नहीं लागल लागा है बरबत कहाँ सुने माँ। त आई जब पर्यावरण के चर्चा चली नहीं, तब पर्यावरण के गीत सुन लेई।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरव

योगदान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

भैया बहनी, आज हुआ शुक्रवार और उसरी आए अपना चौका केर। अपना पचे सोचत हो कि राधा बहनी आज बत कहाँ में भर कर ही का, आज कुछ लेके नहीं आई यहीं। अरे सोचई ना, आज हम लेके आए हैं अपना चौका माँ सित्तू के कचौड़ी। ता आई हम पाचे सबको मिल के सामान सुनी एकर। त लिखी अपना पचे सामग्री, चना केर सित्तू एक पाव, प्याज बारीक कटा दुई ठे, हरी मिर्ची दुई ठे कटी, हरी धनिया पत्ती कटी, नींबू के रस, पुदीना के पत्ता, नमक स्वादानुसार, हल्दी स्वादानुसार, मोमन के खातिर मीठा तेल, गेहूं के आटा, अकी मैदा, करायल और जवाइन। अब बनावे केर विधि सुनी। सित्तू मा कटी प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्ची, नमक, नींबू के रस मिलाई के बढ़िया से भरावन तैयार कर ली। ओह माँ थोड़ कर सरसों के तेल डाल दे। अब एक ठे बर्तन माँ आटा अकी मैदा ले ली। ओह माँ अंदाज से मोवन के निता तेल डारी, करायल और अजवाइन मिलाई, नमक थोड़ कर डाल दे। अब थोड़ थोड़ पानी डारत कीन आटा का निकाह से सान ली। फिर थोड़दार खीतीर ढाकी के वही रखी दे। अब कराही आँच में चढ़ा दे। ओहमा सिराबे के लाने घी या तेल डारी। अब छोट छोट लोई बनाई। लोई में सित्तू के मिश्रण भरी, जैसा मनी दाल पूरी में भरत है वह मेर के अपना पचे भरब। आओ देखी कचौड़ी के नाई बेल के छोट छोट अब सिराबे लागी बढ़िया सुनहरी हो तक तली। तैयार है अपना के सित्तू के कुरकुरी कचौड़ी, बढ़िया टमाटर के तीखी तीखी चटनी या मन पसंद सब्जी के साथ है यही परोसी। हाँ भैया बहनी, या सित्तू के कचौड़ी स्वाद के साथों साथ पौष्टिक होत है। कम सामग्री और कम समय और कम मेहनत मत तैयार हो जाते। देखी गर्मी के महीना में खास तौर से यह फायदेमंद होता है। एहमा प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अच्छी होती, सेहत के निता यह वरदान आए। तो अपना पंचे आसानी से यह कचौड़ी का बनाई खई और अपने जन परानी का खवाई, स्वस्थ रही, खान पान में ध्यान दे। कहा था मना कि खाए आहार तो ढूंसे पहाड़। आओ भैया बहनी देखी, केंद्र माँ नरेंद्र मोदी सरकार 12 बरिस सफलतापूर्वक पूर कैलिन हिन। इया कार्यकाल मा बुनियादी ढांचा, डिजिटल क्रांति और गरीब कल्याण योजना मा विशेष जोर दीन गहावे। उपलब्धि का पूर जनता तक पहुँचावे के निता पूर देश मा एक विशेष जनसंपर्क और जागरूकता अभियान चलावा जा रहा है। हाँ भैया बहनी, ई 12 माँ किन गे प्रमुख कार्य और उपलब्धि बहुत हैं। आज हम चर्चा करब सरकार के महिला सशक्तिकरण के बारे में। त महिला सशक्तिकरण का महिला कल्याण से आगे बढ़ाए के महिला नीत विकास का नवा आयाम दीन गहावे। महिलान के आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, निर्णय ले के भागीदारी सुनिश्चित करे के खातिर कईक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हम। जैसा आर्थिक स्वतंत्रता योजना मा मुद्रा योजना के तहत करोड़न महिलन का बिना गारंटी के ऋण और लखपति दीदी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलन का आजीविका से जोड़ के आत्मनिर्भर बनावा गहवे। हाँ भैया बहनी, बतावत चली कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी सरकार के सबसे चर्चित महिला केंद्रित योजना मा हवे। सरकार के मुताबिक अब तक 10 करोड़ से अधिक गरीब महिलन का मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिन जा चुका है। यह योजना से गांव के महिलन का लकड़ी और चूल्हा के धुआं से राहत मिला है। स्वास्थ्य सुधार के साथों साथ उनकर समय बचा जौने का उ दूसरे काम में लगाए रही हैं। सुरक्षित मातृत्व अभियान और मातृ वंदना योजना के तहत महिलन के स्वास्थ्य और मातृत्व सुरक्षा का लई के मोदी सरकार कई अक्ठे अहम योजना शुरू करीन हमा।
प्रधानमंत्री स्वच्छित मातृत्व अभियान के तहत हर महीना के 9 तारीख का गर्भवती महिलन के मुफ्त जांच की व्यवस्था की गई है। एके साथ है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए पहल बेर माँ बने वाली महिलन का आर्थिक सहायता दीन जा रही है। सरकार के कहब यह है कि ऐसे गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच मजबूत हुई। ग्रामीण क्षेत्रन में इन योजना के खास असर देखे का मिला है। साथ है मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन कैके 12 सप्ताह से बढ़ाए के 26 सप्ताह कई दिन गहबे। यही कामकाजी महिलन के खातिर बड़ा और संवेदनशील फैसला माना गहबे। ऐसे महिलन का अपने नवजात शिशु के बेहतर देखरेख के साथ अपन नौकरी चाकरी जारी रखे में मदद मिली हबे। ऐसे लाखन महिला बहिनी हरे का बिना नौकरी छोड़े अपने नवजात शिशु के उचित देखभाल करे के अवसर मिला है। तब भैया बहिनी महिला सशक्तिकरण में आपन सरकार काफी जोर देने है। बहिनी हरन का कौनो मेर के परेशानी न हो, सरकार के उठाएंगे ई ठोस कदम निश्चित रूप से महिला वर्ग में एक सकारात्मक ऊर्जा भरे के काम की नहीं सब है। आओ

भैया बहनी, जैसा आज हम बच्चे सबको जानी थे कि 5 जून आए और पर्यावरण दिवस मनावा का है, ता आई ना कुछ एकाकठी और गीत गाना हो जाए पर्यावरण के, ता आई मैंने सुनाई या पर्यावरण गीत।

द्वारे माँ नीम लगवावा, हुकुम कुतवाली सिहावा, या अब हम पचे पर्यावरण गीत सुनत रहन है, जेही सुनावत रही हैं प्रमिला तिवारी। त सही हुआ पेड़ पौधा का मनी बचाए के राख है काटे ना, अ देखी दिनन

जब पेड़ पौधा कटे जात हैं, कटे गे आ न रही जाई ता मने इनके का दशा होई, या सबको मने जानत है फेरो कुताही करत है। आओ देखी आज पूरे देश मा पूरे विश्व मा पर्यावरण दिवस मनावागा आओ लोगन का जागरूक कीन जाय रहा है। देखी एक दिन मने अगर जाग आवा तो कुछ न होई, एक दिना चाहे हम कुछ करब एक दिना के कौनो काम की इन्हें से ना होई, एहमा हम पचे जब रोज अमल करब तब जाय के वह काम सार्थक हुई। त देखी मने सबको मिली जुली के पर्यावरण खातिर कुछ काम करे। भैया बहनी बढ़त जनसंख्या और मुख्य व्यवसाय के खातिर लोग मछली पकड़े का आपन लाभ के धंधा बना चुके हम जौन की अपने जगह में गलत आए। देखी संयुक्त राष्ट्र अवैध बिना सूचना दीन है और अनियमित मछली पकड़े के खिलाफ लड़ाई के खातिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर बरिस 5 जून का विश्व भर में मनावे के संकल्प लीन हिस, जौने अवैध बिना सूचना दीन है और अनियमित मछली पकड़े के गतिविधि के मुद्दा का संबोधित किन जा सके। 5 जून वह दिन आए जब बंदरगाह राज्य उपाय समझौता आधिकारिक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में लागू भा रहा था, जौन की 5 जून 2016 का लागू भा रहा PSMA द्वारा। हाँ भैया बहनी अवैध मछली पकड़ब आओ मछली पकड़े के गतिविधि का संदर्भित करत है जौन विदेशी जहाजन के द्वारा कौनो अन्य राज्य के अधिकार क्षेत्र वाले जल क्षेत्र में बिना अनुमति के कीन जात हवे। अवैध मछली पकड़ब वैश्विक स्तर पर अत्यधिक मछली पकड़े से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का खतरा में डारत है। खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता का जोखिम डारत है। मछली पकड़े के गतिविधि के कारण हर भरी बरिस लगभग 11 से 26 अरब टन मछली के नुकसान होत है, जौने के अनुमानित आर्थिक कीमत 10 से 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। मछली पकड़ के ओकर भंडारण करब राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयासन का कम करत है। ई सब बातन का देखत कीन अवैध और अनियमित मछली पकड़ब एक व्यापक श्रेणी के गतिविधि के संक्षिप्त रूप आए। प्रतिक्रिया का परिभाषित करब समस्या के हिस्सा आए। हालांकि अन्य सब देशन के नाई भारत देश के आपन कानून नियम और रिपोर्टिंग के आवश्यकता हवे, जौने में आपन देश सतत प्रयास में लाग हवे। देखी अवैध रूप से कौनो काम करब गुनाह आए, जब तक कानून के नजर से मनई बचा रहत है तब तक नीक लागत है, और जब कानून के सिकंजा में जकड़ जात है तो सगली बुद्धि ठिकाने लग जाती। आओ एक न एक दिन अवैधानिक रूप से काम करे वालिन का समूहे आवे का परत हवे। देखी भैया बहनी कौनो काम करी वैधानिक रूप से करी, जौने दिन भर काम कीने के बाद रात के मने निसोच सो सके। सोचे वाली बात यह है कि पानी मा मछरी के रहे पूर पानी साफ सुथरा रहत है, जो पानी मा मछरी के रहाइस न रहे त गंदा और पानी प्रदूषित हो जाते, काहे कि मछरी ई सब के भोजन लय के हम ही पाचन का स्वच्छ साफ सुथरा पानी दे में सहायता प्रदान करती हैं। जौने तालाब या नदी में मछली नहीं रहे वहाँ के पानी देखी काई और गंदगी से पानी पटा रहत है। पुरनिया सुधकरी जब तालाब के पानी का लोग खाना बनावे का घरे लेके आवत रही हैं, साफ सुथरा राहत हो तो वही ना, अब भला हुआ पानी से कुल्ला कैले नामुमकिन है। एह से सबको एह बाबत विशेष ध्यान दे। एक कहती जहाँ
मछली रोजगार के साधन आही उहे दूसरे कहती पानी के स्वच्छता में आपन सहभागिता निभाती हैं। तो आई सबको यह अवैध अनियंत्रित मछली पालन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस में आपन सहभागिता निभाए के ही सार्थक बनाई और अपने जीवन का खुशहाल लई जीवन में खुशहाल लई। आ देखी अब होती चले केर जूना त लिखी अपना पचे कार्यक्रम केर पता चौपाल केर चिट्ठी द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा मध्य प्रदेश पिन कोड हवे 48600001 त इहे पता में रही अपना पंचन के पाती के परिखाओ। अब देई आज्ञा चौपाल के सबे सुनैयन का राधा बहिनी के राम राम जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष महिला सशक्तिकरण।
1: This is Akashwani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer is Arjun J. Chaudhary.
2: Vishesh Shrinkla, Modi Sarkar ke 12 saal ke antargat aaj suniye, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों और पहलों पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे हैं अर्जुन जी चौधरी।
3: A warm welcome to our listeners on Akashvani, and today we're joined by Shri Bharat Kheda, who is the secretary at the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and we will be discussing about the major reforms and initiatives in the growth and empowerment of MSMEs. Bharat Kheda ji, a warm welcome to you on this podcast.
4: It's a matter of pleasure to be here with you today.
3: And the reason why we are having this special discussion on MSMEs is the growth of the number of the entities that are in business right now, entrepreneurship, the employment that all of this has brought in, and really the contribution to the gross domestic product of the economy as well. But we'll try and simplify it for the benefit of our listeners on Akashvani. Bharat Kheda ji, agar hum isko saral tarike se dekhe, to entrepreneurship ka role kya raha hai MSMEs mein?
4: देखिए, MSMEs में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है इनोवेशन। और मैं ये समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का ये एक जरिया है, और इसी फीलिंग के साथ आज के समय में स्टार्टअप्स और MSMEs पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। इनफैक्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स दिस इकोसिस्टम हैज रियली इवॉल्व्ड एंड गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, आई वुड से, इन इंडिया, एंड टुडे इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 30% टू द GDP, 35% to manufacturing, 60% to employment, and 48% to exports. So that is the reason why a lot of people say it has become the backbone of the Indian economy.
3: Usually, anyone engaged in entrepreneurship is looking at a business opportunity, and then they're looking to create a system to exploit that opportunity. How do you see the government supporting this energy and spirit of the entrepreneur?
4: I would say

0: were having incubations done for the startups. That was the third component of the scheme. We were encouraging them for filing intellectual property rights. That was the fourth component of the scheme. We were pushing them towards greening and sustainable manufacturing, which was another component of the scheme. So we have now added AI also to that, so that MSMEs are not left behind in this new technology.
1: Bharat Khedaji, thank you so much for being with us. We have unfortunately run out of time, but the discussion can be endless. That is the scope of the micro, small and medium enterprises. Thank you so much for being with us.
0: Thank you.
2: In the special series, 12 Years of the Modi Government, you are listening to an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer was Arjun J. Chaudhary. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: अभी आपने सुना समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म कभी अलविदा ना कहना से। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, फिल्म कभी अलविदा ना कहना के ऐसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
4: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
6: कवि हेमंत देवलेकर,
7: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचना

0: कार अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250

0: गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी।

0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. Now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai, balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hongi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
2: आज भी यहां कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमण और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
1: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26, despite a global economic crisis.
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Program Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fisheries sectors. Addressing a press conference in New Delhi today, Secretary Ministry of Statistics and Program Implementation Saurabh Garg said, gross fixed capital formation recorded a robust growth of 8.2% in 2025-26.
3: Gross fixed capital formation, which represents the investment in the economy, that has been remarkable 8.2% in 25-26, increasing from 6.4% in 24-25. And gross fixed capital formation indicates that perhaps future growth should also be robust because it signifies the investment in the economy.
1: Speaking on the occasion, Chief Economic Advisor Dr. V. Anant Nageshwaran said, the government has taken several proactive measures to maintain macroeconomic stability amid global uncertainties.
4: We are obviously very pleased with the growth outcome. It only confirms what we believed on February 27, that the Indian economy was actually in a pretty strong Goldilocks situation with good growth, moderating inflation and the fiscal deficit coming down, etc. So these numbers show that there is an underlying strength and resilience to India's macroeconomic trends, and we are heartened to see that the high frequency data have confirmed that this momentum has continued into the new financial year so far.
1: The Reserve Bank of India has kept key interest rates unchanged for the second consecutive monetary policy review in the current financial year. Announcing the bi-monthly monetary policy today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain the repo rate at 5.25% while maintaining a neutral policy stance. The RBI has revised its GDP growth projection for the current financial year downward to 6.6% from the earlier estimate of 6.9%. The central bank has also raised its inflation forecast to 5.1% from 4.6%. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in. and download the News on EIR app. Union Home Minister Amit Shah has said that the Smart Border project is in its final execution stage, with a pilot rollout planned next year at 7 to 8 sensitive locations along borders guarded by the BSF and SSB. Addressing the Prahari Sammelan at Lankamura border outpost in Tripura today, Mr. Shah said the project will integrate advanced technology, jawans and local civil administration to create an impenetrable border management system.
5: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है,
6: वी हैव डिसाइडेड टू डेवलप स्मार्ट बॉर्डर्स वेयर एवर द बीएसएफ एंड द एसएसबी आर डिप्लॉयड अंडर अ फोर प्रोन्स्ड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. वी विल वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेवरेज टेक्नोलॉजी टू मेक द कंट्रीज बॉर्डर्स कंप्लीटली सिक्योर.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्कियाती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद की कफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की जाएगी। जुनू मगरबी मानसून बुहरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद की फालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमूई काबिल क़द्र तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है, जो तवानाई में खुद की फालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदामात पेशरफ की क़यादत करेंगे और अवाम के लिए ज़िंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में हैं, जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान तवानाई में खुद की फालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: भारत की मईशत ने साल 2025-26 के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रखा है। साल 2024-25 की 7.1% असल GDP के मुकाबले साल 2025-26 के दौरान असल GDP की तरक्की का तखमीना 7.7%

0: स्वदेशी तर्ज पर तैयार कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। ये इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वाज़ह मौक़िफ़ को दोहराया है कि नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खित्ता भारत का अटूट और नाकाबिल तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि साल 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिल वापसी इल्हाक हुआ था। उमूर खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशें उन बुनियादी मसाइल को नहीं छिपा सकती जिनमें इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, सियासी जबर, माशी इस्तेहसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में आज़ादी से महरूमी शामिल है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में किसी भी बुनियादी या इंतजामी तब्दीली की कोशिश को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के इकदाम उन हकायक को छुपा नहीं सकते कि पाकिस्तान अब भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाकों पर काबिज है जिन्हें खाली करना होगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वजीर आशीष सूद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब सूद ने कहा कि वजीर आला ने गैर कानूनी तामीरात, फायर सेफ्टी के उसूलों की खिलाफ वर्जियों और इंतजामी लापरवाही से पेश आए हालिया अलमनाक हादसे पर तशवीश का इजहार किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने आफात से निमटने से मुतालिक एक्ट 2005 की मुख्तलिफ दफात को मौसर तरीके से नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर रिहायशी या तिजारती इमारतों के मालिकान इस कानून के तहत कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्मानों के साथ साथ कैद की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। जनाब सूद ने कहा कि मुस्तकबिल में डीएम्स को अपने जिले में काम करने वाले किसी भी महकमे के अफसरान की जवाबदेही तय करने का इख्तियार हासिल होगा। वो जरूरत पड़ने पर महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश, FIR दर्ज करने और वजह बताओ नोटिसें जारी कर सकेंगे। गुवाहाटी में हलफबरदारी की एक तकरीब में 12 नए काबिनी वुजरा को शामिल करते हुए आज आसाम की वुजरा काउंसिल में तौसी की गई। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने नए वुजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आसाम की वुजरा की काउंसिल की तादाद अब बढ़कर 17 हो गई है। आइन के तहत आसाम में वजीर आला समेत ज्यादा से ज्यादा 19 वुजरा हो सकते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ऐलान किया कि अंडमान जजायर के मशरक़ी साहिल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि ये दरियाफ्त बुहरे अंडमान के तवानाई के वसी इम्कानात को वाजह करती है और इस तास में जारी जस्तजू की मुहिम में एक और कामयाबी को नुमाया करती है। पद्म अवार्ड्स 2027 के लिए नामजदगी का अमल अगले माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगी और सिफारिशात का अमल जो 15 मार्च को शुरू हुआ था सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से मौसूल नामजदगियों के जरिए जारी रहेगा। वजारत ने सिलसिले में शहरियों से खुद नामजदगी समेत नामजदगियां और सिफारिशात दाखिल करने की अपील की है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नतायज के ऐलान के बाद अपने पोर्टल पर हुए मनसूबाबंद साइबर हमलों के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 12वीं जमात के उम्मीदवारों के जवाबी पर्चों के वेरिफिकेशन और दोबारा जांच के लिए यह पोर्टल 2 जून को शुरू किया गया था। CBSE ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान पोर्टल पर मुतअद्दिद मनसूबाबंद साइबर हमले हुए हैं। ताहम इन हमलों को 24 घंटे 7 दिन की लगातार निगरानी और जवाबी मैकेनिज्म के जरिए नाकाम बना दिया गया। इस दौरान IIT कानपुर, IIT मद्रास और दीगर मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की साइबर सिक्योरिटी टीमों की मदद हासिल रही। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मगरबी वस्ती और मगरबी वस्ती बुहरे अरब, गोवा के हिस्सों और कर्नाटक के इलाकों में मजीद आगे बढ़ गया है। इस तरह की सूरत हाल तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में भी जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जुनूब मगरबी मानसून के वस्ती बुहरे अरब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मजीद हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ने के लिए सूरत हाल मुवाफिक है। मौसमियात की एजेंसी ने यह भी कहा है कि आइंदा दो से तीन दिन के दौरान इसी तरह की सूरतहाल मगरबी वस्ती मशरकी वस्ती और शुमाल मशरकी खलीज बंगाल के इलाकों के साथ साथ शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी जारी रहने की तवक्को है। हॉकी में भारत ने आज जापान के शहर काकामी गहारा में खेले गए मर्दों के अंडर 18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 3-5 से हरा दिया, जहां भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद की फालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इक्तसादी पेशरफ को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ 7.7% रखी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इस 7 सरहदी मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ कराई जाएगी। और जुनूब मगरबी मानसून बहिर अरब गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत। इसमें आज सुनिए फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 पर वार्ता। आलेख नावेद इशरत का है, वाचन स्वर और प्रस्तुति मनीष गजभिये की है।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपीय। शो तो आज के खेल पत्रिका में हम लेकर आए हैं फीफा विश्व कप 2026 पर यह वार्ता, आलेख नवीद इशरत का और वाचन मनीष गजपीय का।

खेल प्रेमियों के लिए वर्ष 2026 एक विशेष उत्सव लेकर आ रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल का सबसे बड़ा मंच फीफा विश्व कप 2026 अब हमारे सामने है। यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि संस्कृतियों, देशों, भाषाओं और करोड़ों सपनों का एक ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देता है। आज की इस वार्ता में हम जानेंगे फीफा विश्व कप के गौरवशाली इतिहास, फीफा विश्व कप 2026 की विशेषताएं, इसमें हुए महत्वपूर्ण बदलावों और उन भारतीय मूल के खिलाड़ियों की कहानी जो इस बार विश्व कप फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते दिखाई दे सकते हैं। फीफा विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1930 में उरुग्वे में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हो सका, लेकिन इसके बाद यह प्रतियोगिता हर चार वर्ष में नियमित रूप से आयोजित की जाती रही है। विश्व कप आज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। करोड़ों दर्शक इसे देखते हैं और अरबों लोग इसकी चर्चा करते हैं। ब्राजील अब तक सबसे सफल टीम रही है जिसने 5 बार विश्व कप जीता है। वहीं अर्जेंटीना, जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन जैसी टीमें भी अपने शानदार प्रदर्शन से विश्व फुटबॉल में अमिट छाप छोड़ चुकी है। वर्ष 2022 में कतर में आयोजित विश्व कप में अर्जेंटीना ने रोमांचक फाइनल में फ्रांस को हराकर तीसरी बार खिताब जीता था। अब दुनिया की निगाहें 2026 पर टिकी है। फीफा विश्व कप 2026 कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इस टूर्नामेंट में 48 टीमें भाग लेगी। अब तक विश्व कप में 32 टीमें खेलती थी। टीमों की संख्या बढ़ने से अधिक देशों को विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। दूसरी विशेषता यह है कि पहली बार विश्व कप की मेजबानी 3 देश मिलकर करेंगे, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। इससे पहले कभी भी 3 देशों ने संयुक्त रूप से विश्व कप की मेजबानी नहीं की है। टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा और कुल 104 मुकाबले आयोजित होंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप होगा।

इस फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमों को 12 समूह में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह में 4 टीमें होगी। ग्रुप चरण के बाद शीर्ष 2 टीमें और सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमें अगले दौर में पहुंचेगी। इससे प्रतियोगिता और अधिक प्रतिस्पर्धी और रोमांचक बन जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि टीमों की संख्या बढ़ने से फुटबॉल का वैश्विक स्तर और तेज होगा।

अर्जेंटीना अपने खिताबी चुनौती पेश करेगी। ब्राजील अपने छठे विश्व कप की तलाश में होगा। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल और नीदरलैंड जैसी टीमें भी मजबूत दावेदारों में शामिल है। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि युवा खिलाड़ियों की नई पीढ़ी इस विश्व कप को और अधिक रोमांचक बना सकती है। आधुनिक फुटबॉल की तकनीक, फिटनेस और रणनीति की भूमिका पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे में केवल परंपरागत दिग्गज ही नहीं बल्कि उभरती हुई टीमें भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। आज का फुटबॉल पहले की तुलना में काफी ज्यादा बदल गया है। वीडियो असिस्टेंट रेफरी यानी VAR, गोल लाइन तकनीक, डेटा विश्लेषण, खिलाड़ियों की फिटनेस मॉनिटरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रणनीतियां खेल का स्वरूप बदल रही है। अब मैच केवल मैदान पर नहीं जीते जाते बल्कि उनके पीछे काम करने वाली विश्लेषणात्मक टीमों, फिटनेस विशेषज्ञों और रणनीतिकारों की भी बड़ी भूमिका होती है। 2026 विश्व कप में तकनीक का और अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत भले ही अभी तक फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है, लेकिन 2026 का विश्व कप भारतीय दर्शकों के लिए एक विशेष कारण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार भारतीय मूल के कुछ खिलाड़ी विभिन्न देशों की टीमों का हिस्सा बनकर विश्व कप में दिखाई दे सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम है तहसीन मोहम्मद का। तहसीन मोहम्मद भारतीय मूल के ऐसे फुटबॉलर है जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और प्रतिभा के बल पर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कहा जाता है जब अन्य बच्चे आराम करते थे तब तहसीन मैदान में अभ्यास करते थे। उन्होंने बचपन से ही फुटबॉल के प्रति असाधारण समर्पण दिखाया। कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने सपने को जीवित रखा। कतर की प्रतिष्ठित फुटबॉल अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिभा से कोचों और चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। आज वे उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जिनसे भविष्य में बड़ी उम्मीदें की जा रही है। यदि वे विश्व कप खेलते हैं तो यह भारतीय मूल के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा और भारतीय युवाओं को यह संदेश मिलेगा कि समर्पण और मेहनत के बल पर विश्व मंच तक पहुंचना संभव है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कभी भारत विश्व कप खेलेगा? यह प्रश्न हर भारतीय फुटबॉल प्रेमी के मन में उठता है। भारत ने अभी तक फीफा विश्व कप के मुख्य टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय फुटबॉल की संरचना और सकारात्मक बदलाव हुए हैं। युवा खिलाड़ियों के लिए अकादमियां विकसित हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग उपलब्ध हो रही है और पेशेवर लोगों का विस्तार हो रहा है। यदि यह प्रक्रिया लगातार जारी रही तो आने वाले वर्षों में भारत विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने का सपना साकार कर सकता है। विश्व कप केवल खेल आयोजन नहीं है बल्कि अरबों डॉलर के आर्थिक प्रभाव वाला वैश्विक कार्यक्रम है। पर्यटन, होटल, उद्योग, परिवहन, विज्ञापन, प्रसारण और खेल उपकरणों का बाजार विश्व कप के दौरान तेजी से बढ़ता है। मेजबान देशों को इससे आर्थिक लाभ के साथ साथ वैश्विक पहचान भी प्राप्त होती है। फीफा विश्व कप 2026 केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि फुटबॉल के भविष्य की नई शुरुआत है। 48 टीमों का विस्तार, 3 देशों की संयुक्त मेजबानी, नई तकनीक, नई प्रतिभाएं और वैश्विक भागीदारी इसे इतिहास का सबसे भव्य विश्व कप बना सकती है। दुनिया की निगाहें अब 11 जून 2026 पर टिकी है जब फुटबॉल का यह महाकुंभ शुरू होगा। भारत के फुटबॉल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इंडियन सुपर लीग, युवा अकादमियां और जमीनी स्तर पर हो रहे प्रयास इस खेल को नई दिशा दे रहे हैं। विश्व कप जैसे आयोजन भारतीय युवाओं को प्रेरित करते हैं। आज देश के अनेक हिस्सों में बच्चे फुटबॉल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि करियर के रूप में भी देखने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और प्रतिभा विकास पर निरंतर ध्यान दिया जाए तो आने वाले वर्षों में भारत भी विश्व फुटबॉल में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। फीफा विश्व कप केवल गोल और जीत हार की कहानी नहीं है, यह देशों के बीच मैत्री, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक एकता का प्रतीक भी है। जब विभिन्न महाद्वीपों की टीमें एक ही मंच पर उतरती है तो खेल सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता को जोड़ने का कार्य करता है। यही कारण है कि

विश्व कप को अक्सर फुटबॉल का महाकुंभ कहा जाता है। फीफा विश्व कप 2026 कई नए अध्याय लिखने जा रहा है। 48 टीमों का विस्तार, 3 देशों की संयुक्त मेजबानी, रिकॉर्ड 104 मुकाबले और नई प्रतिभाओं का उदय। यह टूर्नामेंट केवल विश्व चैंपियन चुनने का मंच नहीं होगा, बल्कि फुटबॉल के वैश्विक विस्तार और नई संभावनाओं का भी उत्सव होगा। भारतीय दर्शकों के लिए भी यह विश्व कप खास रहेगा, क्योंकि इसमें भारतीय मूल के खिलाड़ियों की मौजूदगी हमारी भावनात्मक भागीदारी को और गहरा बना सकती है। तो आइए हम सब मिलकर इस फुटबॉल महोत्सव की प्रतीक्षा करें और देखें कि 2026 में कौन कौन सी टीमें इतिहास रचती है और कौन से खिलाड़ी दुनिया के दिलों पर राज करते हैं। धन्यवाद।

0: अभी आपने फीफा विश्व कप 2026 पर यह वार्ता सुनी। आलेख नवीद इशरत का था और वाचन मनीष गजबिये का। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था।
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
6: कार्यक्रम खेल जगत अभी आपने सुना, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में।
7: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं यह गीत फिल्म आराधना से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी की शब्द रचना और एस डी बर्मन का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म का नाम है लोफर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म का नाम है दोस्ताना।

0: श्रोताओं, फिल्म दोस्ताना के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जिसका विषय है पीएम मोदी के 12 साल, ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत। विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर संजय घोष और कर्नल राकेश बुधानी। वार्ताकार हैं दीपा सिंह और प्रस्तुति है प्रादेशिक समाचार एकांश की। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर साहस, रणनीति, राष्ट्र सेवा की मिसाल है। इस ऐतिहासिक अभियान की पहली वर्षगांठ पर हम चर्चा करेंगे उस अदम्य साहस, अनुशासन और देशभक्ति की जिसने पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर संजय घोष और कर्नल राकेश बुधानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ब्रिगेडियर सर, पहला सवाल आपसे है, ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में विस्तार से बताइए।
2: कई दशकों से भारतवर्ष जो है पाकिस्तान से उत्पन्न हुए जितने भी आतंकवादी हमले या आतंकवादी गतिविधियां थी उससे हम लोग काफी प्रभावित थे।
1: बिल्कुल,
2: वो एक चरम सीमा में पहुंच चुकी थी जिसमें कि हमारे देश के अस्तित्व को चुनौती दिया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद, पहलगाम में जो हुआ पूरे देश को पता है।
1: बिल्कुल,
2: वो एक बहुत ही निंदनीय और बहुत ही बेकार किस्म का एक हमला था इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट को यूज करके, और एक जवाब जो देना था वो हमने टेररिज्म के अगेंस्ट दिया। अगर किसी को लगता है कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट दिया, ऐसा शायद ना हो, लेकिन हाँ आतंकवाद को कि अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वजह थी सबसे पहले कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। बुधानी सर, जब भी इसी तरह का ऑपरेशन होता है या फिर हम जिस तरह की भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद को बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, तो उस समय हालात कितने कठिन होते हैं जमीन पर, जो सेना के हमारे जवान होते हैं उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
4: देखिए, युद्ध या कोई भी ऑपरेशन शुरू करते समय एक बहुत कम से कम वार्निंग टाइम दिया जाता है जिससे कि जो आपका ऑपरेशन है उसकी उसका गुप्त नेचर बना रहे और बहुत ही त्वरित प्रक्रिया करनी पड़ती है, और कई सालों की ट्रेनिंग और अभ्यास से जो ड्रिल्स और जो प्रोसीजर्स सेट इन किए गए होते हैं उनको क्रियान्वित करना होता है उस दिन उस समय के हालात, मौसम और परिस्थिति को नजर रखते हुए। तो मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ही अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है सशस्त्र सेनाओं को हर समय कि कब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि हमें ऑपरेशन में जाना पड़े, हमें लड़ाई जैसी स्थिति या लड़ाई करनी पड़े और हम उसके अंदर विजयी हों, हम उसके अंदर अच्छा रिजल्ट हासिल करें।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने। संजय सर, किसी भी अभियान की सफलता के पीछे उसकी रणनीति पर निर्भर करती है पूरी सफलता, तो ऑपरेशन सिंदूर की योजना किस प्रकार बनाई गई और क्या आजकल देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रही है, तो टेक्नोलॉजी की कितनी भूमिका रही है ऑपरेशन सिंदूर में?
2: बिल्कुल सही कहा दीपा आपने। ऑपरेशन सिंदूर से जो हमें लेसन्स मिले हैं वो ये दिखाता है, आज एक साल हो गए हैं, कि जॉइंट ऑपरेशन कितना जरूरी है और तीनों सेनाओं के जो अंग है उन्होंने ये दर्शाया है कि एक दूसरे के साथ मिलके कैसे हम दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि प्रेसिशन स्ट्राइक दिखाया गया है। प्रेसिशन स्ट्राइक का मतलब ये है कि कितनी सटीकता से हम अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हमारे भारतीय वायुसेना ने वो करवा के दिखाया है जिससे कि शायद विश्व में सारे देश काफ़ी अचंभित हो गए थे कि भारतवर्ष ये कर सकता है पाकिस्तान के अंदर डीप घुस करके अपने एयरफोर्स से तथा मिसाइलों से।
1: जी,
2: आपने सही बताया कि तकनीकी जो बढ़ोतरी हो रही है लड़ाई में, युद्ध के क्षेत्र में, उसके साथ देश को साथ रहना बहुत जरूरी है। और हाल ही में जैसे हम ईरान के आसपास देख रहे हैं किस तरह के वहां पे युद्ध हुए, सो आज तकनीक की जो हमें चाहिए विशेषता है उस पे देश को रोज सोचना होगा और अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ानी होगी। शायद अगर हम सिर्फ बोले कि हमारी सेना बहुत ताकतवर है, वो ताकत आएगी जब हम साथ ही साथ सेना तकनीक के साथ आगे बढ़ेगी।
3: बिल्कुल।
2: और शायद आगे ऑपरेशन सिंदूर जैसे और ऑपरेशंस हुए तो हमें अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी कि हम कितने अच्छे हैं टेक्नोलॉजी को यूज करने में और नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में।
3: टेक्नोलॉजी की हमने बात की है कि वाकई अभी हम लोग काफी अपग्रेड हो चुके हैं। बात करें अगर रक्षा बजट की, तो इस साल का जो बजट आया है उसमें रक्षा बजट को दुगुना किया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं?
2: देखिए, रक्षा बजट को दुगुना करने का मतलब ही यही है कि भारतवर्ष चाहता है कि अपनी रक्षा सेवाओं को अपग्रेड करें, और अपग्रेड करने में हम देख रहे हैं कि नए नए टेक्नोलॉजी कितने हम ला सकते हैं और उस पे काम चल रहा है। तो हाल ही में आप अगर पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे, ड्रोन्स इतने यूज हो रहे हैं कि आज देश भर में हमारी जो युवा है उनको सिखाया जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और युद्ध के क्षेत्र में भी अब हवा में इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रहे हैं कि जिससे कि शायद पैदल सेना से ज्यादा तकनीकी सेना पे बहुत ज्यादा जोर है। तो हमारे लड़के लड़कियां जो भारतीय सेना में सशस्त्र सेनाओं में जा रहे हैं और उनको ये शिक्षा दी जा रही कि वो कितने ज्यादा टेक्नोलॉजी से प्रभावित हो और उसको यूज करने की क्षमता बढ़ाए।
3: बिल्कुल,
2: इसी से देश के रक्षा सेवाओं में बढ़ोतरी आएगी, हमारी सोच बदलेगी और शायद इसी में मैं सोचता हूं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम ऐसा लाएं कि हमारा हर एक बच्चा जो युवा बन रहा है और आगे के लिए सोच रहा है डेली अपनी जिंदगी में टेक्नोलॉजी के यूज को आगे संभालता रहे, बढ़ाता रहे और उसका इस्तेमाल करता रहे।
3: बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना में टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और जो हमारे नए जवान नए ऑफिसर्स आ रहे हैं वो भी उनको भी अलग तरह की शिक्षा दी जा रही है ताकि वो भी टेक्नो फ्रेंडली रहें और काम आसान होता रहे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक कि हम तो अपने जवानों को अब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो भी टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे धीमे धीमे। सो हमारे जो जवान हैं और उनको सिखाया जा रहा है कि आप भी अपने ऑफिसर के साथ कदम से कदम मिलाए टेक्नोलॉजी के साथ।
3: राकेश सर, जब जवान मैदान में उतरते हैं तब आपने जिस तरह से बताया बाकी फील्ड पे तो बहुत सारी तैयारी होती है, मानसिक रूप से कितना तैयार होना पड़ता है उनको?
4: अपने अनुभव से मैं ये कहना चाहूंगा कि शारीरिक तैयारी लगभग हम कहें तो 20% और मानसिक तैयारी 80% है। युद्ध बड़ी अनिश्चित हालात में लड़े जाते हैं, रात के समय लड़े जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में लड़े जाते हैं, परिवार और यूनिट की टीम में बहुत चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर होता है और ऐसे तौर पे एक सिपाही से लेकर के सीनियर से सीनियर अधिकारी को मानसिक रूप से बहुत ही दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ होता भी है और बड़े चैलेंजेस आते हैं और अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे लीडरशिप से उस चीज को पाया जाता है। जैसा कि हमने हिंदुस्तान के सभी युद्धों के अंदर देखा है कि हमारी लीडरशिप और हमारी ट्रेनिंग के कारण हमारी सेना बहुत अच्छा परफॉर्म करती है।
3: सही कहा आपने एकदम। ब्रिगेडियर सर, आपकी सर्विस के दौरान कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहिए जैसा कि कर्नल सर ने शेयर किया है?
2: जैसे अभी आप देखते हैं युद्ध जो भी छोटे मोटे हुए कारगिल के बाद, 1990 की बात है जब भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर में खासतौर पे जब आतंकवाद का साया शुरू हुआ था, तो तब हम वहां पोस्टेड थे और वहां LOC पे डिप्लॉयड होते थे उरी के पास पहाड़ों में। और उस वक्त जो आतंकवादी गतिविधियां शुरू हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी JKLF, और वो JKLF जो है पाकिस्तान की तरफ से PO की तरफ से हाजी पीर पास को पार करने के बाद धमका रहे थे भारतवर्ष के अंदर घुसने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए जैसे POK और JNK हमारे तरफ सब सेम है। उस वक्त मैं भारतीय सेना के आर्टिलरी में था और हमारे पास सिर्फ नया नया बोफोर्स था और उन बोफोर्स के तहत और अपने जो इंडियन गन्स थे तो उनको मेरे नीचे एक टुकड़ी को दिया गया था कि आप अगर लगता है और मेरी तब उम्र कम थी और मैं सिर्फ एक नया नया कप्तान बना था।
3: बिल्कुल,
2: एक कप्तान बनके ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत है, मेरे पास 6 बोफोर्स हैं और 6 IFG है, उनको मैं खोल दूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। आप आतंकवादी को देखते भी हैं, समझते भी हैं, और शायद फिर आपको सिखाया गया है, आप सोचते हैं कि देखिए इसका क्या होगा अगर मैंने तोप चला दिए तो, कोई ना कोई तो हाँ बोल देगा आपके कहने पे, क्योंकि आपको लग रहा है हमला होने वाला है। उस रात शायद हमने हमला नहीं किया और हम देख रहे थे कि वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं एक इन्फेंट्री बटालियन के साथ था, 3 सिख रेजिमेंट, और उनके जवानों ने ही जवाबी कार्रवाई में उनको शांत कर दिया। तो हमारे पास अभी भी भारतीय सेना के सारे अंग में ऐसा है कि इतना जज्बा है कि हम शायद तोप खोलने की जरूरत ना पड़े और हमारी भारतीय सेना वैसे ही शांत करते लोगों को, तो वो मुझे आज भी याद।
3: वाकई बहुत प्रेरणादायक किस्सा है, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: राकेश पुधानी सर, देश का युवा जो सेना को प्रेरणा के रूप में देखता है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे?
4: देश का युवा सेना से बहुत ही प्रेरित है और ये पता चलता है जो सेना के लिए भर्ती रैलियां होती हैं जवानों की, और ऑफिसर एंट्री के लिए NDA का एग्ज़ाम, CDS का एग्ज़ाम होता है, और देश का युवा चाहता है कि वो देश की प्रगति में, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे, और ये चीज़ें हमें जब भी हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं या उनका सिलेक्शन एग्ज़ाम्स के टाइम देखते हैं तो अच्छी ये चीज़ खुल करके सामने आती है, और सेना में होने के कारण हम उन्हें हमेशा इसकी शुभकामनाएं देते हैं।
3: संजय सर, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी।
2: जी, युवाओं के लिए देखिए आज भी क्या है कि हमारे देश के युवा सेना से बहुत प्रभावित है।
3: जी,
2: ये पता चलता है आंकड़ों से कि साल में 2 बार UPSC के जो एग्जाम होते हैं सेना के अफसर बनने के लिए, NDA के लिए या CDS के लिए, लाखों में कैंडिडेट आते हैं। इसके अलावा अग्निवीर बनने के लिए भी लाखों में, हजारों में कैंडिडेट आते हैं। ये आंकड़े हैं, तो इन आंकड़ों से क्या दिखाता है कि भारतीय सेना की नौकरी, सशस्त्र सेनाओं की नौकरी, तीनों अंगों की नौकरी के लिए इस देश की युवा में बहुत चाह है। अगर ये चाह है तो इसके वजह कोई पीछे कोई वजह है, और वो ये वजह है कि हमारी युवा आज भी समझती कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाके नौकरी जो है एक अलग ही पद्धति की नौकरी है, जिसमें कि आप जिंदगी को व्यतीत करने वाले हैं यूनिफॉर्म में, देश के लिए, अपने भले के लिए भी, और एक ऐसा करियर जो आपको ग्रोथ ही देता है, हमेशा आपके परिवारों को देखभाल भी कर रहा है और साथ में आपका बढ़ावा हो रहा है, करियर प्रोग्रेशन हो रहा है, जिसमें कि आपकी बुद्धि खुल रही है, आपको देश के बारे में और विदेश के बारे में बहुत कुछ चीजें पता लग रही हैं, तो एक आप एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं। सो अल्टीमेटली द थिंग इज दैट कि एक गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब वो गुड सिटीजन क्या होता है कि वो बनाता है एक देश की छवि, और देश की छवि से क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो यही सोच के मुझे लगता है कि युवाओं का रुझान जो है बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे ऑपरेशन सिंदूर और इन सब के बारे में जब वो पढ़ते हैं, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर को NCERT की किताब में भी डाल दिया गया है एक चैप्टर में, तो ये होना चाहिए, और ये होगा तो हमारे बच्चे जो अगले जनरेशन के लिए बन रहे हैं उनको पता रहेगा अपने हिस्ट्री के बारे में, और वो आगे समझ सकेंगे कि देश की डेफिनेशन क्या है।
3: किताबों के माध्यम से जो हमारे देश का यूथ है वो अपनी सेना के अदम्य साहस और शौर्य को जानेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, जिस तरह से हो रहा है, सिंदूर नाम अपने आप में बहुत ही भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है, तो ऑपरेशन सिंदूर के पीछे कुछ विशेष कहानी?
2: देखिए, हम और आप मिलके ये नहीं बता सकते कि क्यों ये नाम दिया गया।
3: बिल्कुल,
2: लेकिन एज अ कॉमन मैन जो कि सोसाइटी में है, मुझे जैसा लगता है कि पहलगाम अटैक जो हुआ था आतंकवादियों का, उसमें उन्होंने टारगेट करके बहुत सारे औरतों के सिंदूर मिटाए थे और मारा था उनके हस्बैंड्स को, ठीक है, उनके फैमिली मेंबर्स को। तो अगर उन्होंने सिंदूर मिटाए हैं तो मेरे ख्याल से ये नाम यही सोच के रखा गया है कि सिंदूर को कैसे उसका दिखाया जाए असली रूप।
3: बिल्कुल,
2: और यही मुझे लगता है कि किसी ने भारतीय सेना में बैठ के जब ये नाम सोचा होगा तो उन्होंने ये नाम सोचा होगा कि किसी के सिंदूर को मिटाया तो हम उस सिंदूर को ही वापस लाते हैं।
3: अब बिल्कुल सही कहा। बुधानी सर आपकी क्या राय है?
4: बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर संजय घोष से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस बात में। भारत का जो दृष्टिकोण हमेशा से रहा है वो है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अधिक प्रतिबद्धता और जीवन की रक्षा और सुरक्षा का आश्वासन, ये हमारे राष्ट्र का सर्वोपरि हित है हमारे नागरिकों के लिए। और ये हमारे ये एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। तो जैसे कि हमने देखा पहलगाम के आतंकवादी हमले में एक यंग कपल, जिसके अंदर एक यंग विडो अपने पति के देह के साथ बैठी हुई है, और वो एक प्रतीक बना, सिंदूर एक प्रतीक बना हमारे रिटेलिएशन का। और उस सिंदूर नाम ने, उस भावना ने हमारे रिटेलिएशन को रूप दिया कि ये था हमारा सोच उस हमले के प्रति, और हम उसको इस रिटर्न तरीके में क्रियान्वित करते हैं।
3: बिल्कुल ब्रिगेडियर सर, ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं पहली वर्षगांठ की, तो ऑपरेशन सिंदूर को संचालित करने में तीन महिलाओं ने ही सबसे मुख्य भूमिका निभाई है, उसके बारे में आपका क्या विचार है?
2: देश को तीन महिलाएं दिखाई गई थी, लेकिन मैं बताता हूँ इन तीनों के अलावा सैकड़ों और महिलाएं थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना फर्ज निभाया है।
3: बिल्कुल,
2: हर एक फाइटिंग आर्म्स में और सपोर्टिंग आर्म्स में, जिधर नेवी में। सो महिलाएं जो है इस वक्त काफी अच्छा प्रदर्शन दे रही है तीनों अंगों के भारतीय सशस्त्र सेनाओं में। और मैं ये कहूंगा कि आज इतने साल हो गए जब महिलाएं आई हैं सशस्त्र सेनाओं में, उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है और वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को ढाल चुकी हैं भारत के डिफेंस फोर्सेस के यूटिलाइजेशन में। और जैसे कि देश ने उन तीनों महिलाओं को देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के ब्रीफिंग में और उसके बाद कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनको देख के आपको लगा होगा कि वो किस लेवल के मैच्योरिटी पे पहुंच गए हैं।
3: बिल्कुल,
2: वो देख के हमें लगता है कि महिलाएं जो है भारत के सशस्त्र सेनाओं में आगे भी अच्छा ही करेंगे। क्योंकि ये होता है कि हायर डिफेंस मैनेजमेंट पे कि जब आप जाते हैं ऊपर और देश के वेरियस पॉलिसीज और इन डिसीजंस को समझते हैं, एक यंग महिला और आगे चल के 12-15 साल बाद उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, मैच्योरिटी कैसे आती है और वो कैसे निभाते हैं अपने टास्क को, वो प्रदर्शन किया है महिलाओं ने। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद देश को उस प्रदर्शन का एक बहुत ही बढ़िया मिसाल दिया है।
3: बिल्कुल,
2: जो कि शायद दीपा जी आप इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके पास वो छवि अभी भी अच्छा दिख रहा होगा आपके दिमाग में उन तीनों महिलाओं को स्टेज पे बैठ के देख के। यही रीजन है कि बाकी जो नए लड़के लड़कियां जा रहे हैं भारतीय सेना में अफसर या अग्निवीर बन के भी, वो प्रेरणा ले रहे हैं और वो प्रेरित होते रहेंगे कि शायद हम भी एक दिन वहां पे उस टेबल पे बैठ सके।
3: सही कहा आपने सर। बुधानी सर, जिस तरह सर ने बताया कि महिलाएं वाकई हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, सेना में भी उनका लगातार बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको?
4: बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है देश के अंदर महिलाओं को। और एनडीए के अंदर अगर हम लें तो यंग गर्ल्स को मौका मिल रहा है सैन्य सेवाओं में आने का और अपने मर्जी का प्रोफेशन चुनने का। चैलेंजेस हैं, एडवेंचर है, अच्छी लाइफस्टाइल है, और खासकर वे कन्याएं या महिलाएं जिनके पिता, जिनके नाना, जिनके दादा फौज में रहे हुए हैं, जो कि पहले नहीं सोच सकती थी कि हम भी एक प्रकार का फौजी जीवन जी पाएं, उनके लिए ये मौका उपलब्ध किया गया है।
3: संजय सर, ये सवाल है कि जब भी सेना कोई युद्ध संचालित करती है या फिर ऑपरेशन होता है तो उस समय जो है जो ऑफिसर्स की फैमिली है या जो जवान है उनकी फैमिली है, उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है?
2: आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि
3: जी
2: एक दशक था जबकि देश में कम्युनिकेशन सेवाएं इतनी अग्रसर नहीं थी
3: जी,
2: लेकिन आज हम रियल टाइम में हमें सब कुछ पता चल जाता है।
3: बिल्कुल
2: ओके, तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ प्रेशर बढ़ता है और जो फैमिली है अगर उस फैमिली का स्ट्रेस जवान या ऑफिसर पे आने लगे तो उसको अपने बैटलफील्ड पे या जहां पे भी कार्यरत है वहां पे डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट हो सकता है। सो मेरा ये मानना है कि जो फैमिलीज है उनको हमेशा अपने फैमिली के जो भी लोग हैं सेना में उनका मनोबल बढ़ाए रखे। अगर वो अपनी वीकनेस को उन तक जाहिर होने देंगे तो वो इफेक्ट होगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि सारे महिलाओं को या माता पिताओं को या जो भी है जिनके हस्बैंड है या जिनके फादर है, आप जब वो नौकरी पे है तो आप अपनी वीकनेस को ज्यादा जाहिर ना करें ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी डावाडोल हो।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। उम्मीद करते हैं कि जिन श्रोताओं के घर में फौज में लोग होंगे वो इसे समझेंगे, अपनी जिंदगी में अपनाएंगे भी।
2: दीपा जी, ये फैमिली के बारे में जो आपने पूछा कि कैसे इफेक्ट होता है, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैंने पहले बोला था 1990 में एक हाजीपीर का ये इंसिडेंट, तो उसी वक्त उसके बाद शायद 2-3 महीने बाद मैं सामने LOC पे एक BSF पोस्ट था, तो वहां पे मेरे को भेज दिया गया क्योंकि मेरे पास तोप थे चलाने के लिए, मेरे पास और 3 सिख बटालियन की एक प्लेटून थी साथ में
3: जी।
2: और वहां पे जो BSF का सीनियर इंस्पेक्टर डिप्लॉयड था उसकी फैमिली बरेली में रहती थी, उसकी 2 बेटियां थी आज भी मुझे याद है, एक बेटा था और बीवी उसकी बरेली में थी। तो जब हमें खबर मिला कि आज हर हाल में शायद पाकिस्तानी या साथ में उनके जो टेररिस्ट है वो हमारे पोस्ट पे अटैक करने वाले, और उनका पाकिस्तानी पोस्ट सामने दिख रहा था, 100 मीटर पे था। तो ये जो BSF का सीनियर इंस्पेक्टर मेरे साथ बैठे हुए थे और वो बेचारे बहुत ही घबरा गए। उन दिनों थैंकफुली मोबाइल फोन नहीं था हमारे देश में, सो इसलिए बात बात नहीं हो पाती थी। लेकिन वो मुझे रात को बोलने लगे कि सर आपकी तो शादी नहीं हुई है लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मैंने उनको बोला कि देखिए आपको कुछ नहीं होने वाला है तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। तो उस वक्त मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि फैमिली का क्या रोल होता है दिमाग पे।
3: बिल्कुल।
2: और मैंने उनको बोला कि देखिए आप अगर समझते हैं कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कृपया करके पीछे चले जाए 50 मीटर पे, दूसरी कंपनी पोस्ट भी थी। मैंने कहा आप निकल लीजिए, मैं अकेले यहां संभाल लूंगा। उस वक्त खैर मैं तो नया नया कप्तान बना था, मेरी 2 साल की शायद नौकरी थी, तो मुझे आज भी याद है कि कैसे प्रेशर बढ़ता है फैमिली के होने से, उनकी सोच की होने से।
3: बिल्कुल।
2: और उस वक्त युद्ध में आप किस तरह से डावाडोल हो सकते हैं जो मैं बता रहा था।
3: जी जी।
2: तो जब आपने मुझे प्रश्न पूछा मेरे दिमाग में सीधे आज से इतने साल पहले का वो वाकया सामने आ गया, बंकर में बैठ के जो वार्तालाप हो रहे थे वो इंस्पेक्टर के साथ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सारे फैमिलीज को चाहिए कि वो सपोर्ट करते रहे, नहीं तो हमें वहां पे काम करने में बाधाएं आ सकती
3: हैं। बिल्कुल। तो मेंटली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में आपके पिता हैं, भाई हैं, जो भी फौज में हैं या कोई महिलाएं भी हैं तो उनका पूरा फुल सपोर्ट करना चाहिए। घर की छोटी मोटी टेंशन तो आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वो देश हैंडल कर रहे हैं। कर्नल बुदानी, आप कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ?
4: सियाचिन की बात है, सन 1996 की, मैं वहाँ पर तैनात था। मौसम बदलता है, कभी गर्मियां होती हैं, जैसे साल में होता है गर्मियां होती हैं, सर्दियां होती हैं। हम लोग जब सियाचिन की पहाड़ी पे चोटियों पे चढ़े तो गर्मी का समय था और एकदम फिर सालाना जैसे मौसम चेंज होता है, तो कई बार ऐसा होता था कि हम जो छोटी छोटी बंकर्स खंदक बनाते हैं और उसके अंदर स्वयं की भाप से और ठंड से वो दिन भर सिकुड़ते जाते थे, उनकी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर बर्फ जमा होती जाती थी। तो हमारे एक सैनिक थे जो कि चूंकि वहां पर ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, आपके लगभग 3-3.5 महीने उसी बंकर और उसी छोटी सी चौकी पर आपका समय निकल जाता है, तो वो क्रॉल करके आगे वाले पोस्ट पे गए हुए थे और महीने भर बाद जब उन्हें इस तरफ वापस आना था तो वो खंदक जो है, वो सुरंग जो है, वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। तो हमने उन्हें ये कहा कि देखो तुमने महीने भर बहुत यहाँ पर फौज का राशन खाया है, तुम मोटे हो गए हो और तुम इससे अब बाहर नहीं आ पा रहे हो, खैर ये एक लाइटर हंसी मजाक का विषय है, तो बोला वो खुद बोलता था सैनिक, नहीं साहब मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं खा पाता हूँ, खाने का मन ही नहीं करता है, मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, ये सकरी हो गई है। कुल मिला करके हमने उसे तोड़ करके, बर्फ को तोड़ करके उसे निकालना पड़ा। लगभग 6 से 8 घंटे ये हमारी कार्रवाई चली, तब उसको हम इस तरफ खींच के ला पाए और बाहर निकाल पाए। तो ये कुछ एक लाइटर किस्से हैं अग्रिम चौकियों पर डिप्लॉयड होने के और वहाँ की जीवन शैली के बारे में।
3: बिल्कुल सही कहा सर, ये हमें फौजियों से ही मिल सकते हैं, क्योंकि आम जो जनता है हमारे जैसे, वो कैसे महसूस कर पाएंगे कि हमारे सैनिकों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है देश की सुरक्षा के लिए और हम सबको सुरक्षित महफूज कराने के लिए। ब्रिगेडियर सर, जो आज की यंग जनरेशन है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: जो यंग जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी है, उनको मेरा मैसेज यही है, आप देश की परिभाषा को समझें, वो बहुत जरूरी है। शायद हम अपने करियर, अपने सेल्फ को लेके कहीं सोचते रहते हैं, लेकिन देश के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश से ही एक नागरिक की पहचान बनती है। अगर वो पहचान ही ना रही तो आप तो कहीं के नहीं रहे। सो जो भी युवा है, उनको मेरा यही मैसेज है, आप किसी भी तरह अपने आप को बढ़ा रहे हो, लेकिन आप ये सोचते रहिए कि मेरे इस काम से मेरे देश को क्या इफेक्ट होने वाला है।
3: बिल्कुल,
2: अगर वो आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा तो शायद हम सब एक बेहतर नागरिक कहलाएंगे। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ सैन्य लोग या सेना में जो है वही देश के लिए लड़ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, देश का हर नागरिक शायद देश के लिए लड़ रहा है।
3: जी, मैं आपसे यही पूछने वाली थी।
2: वो शायद ऐसा नहीं है कि मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो दीपा जी आप सेवा देश के लिए नहीं लड़ रही हैं, आप ही लड़ रही हैं बिना यूनिफॉर्म पहने, क्योंकि आप जो देश के लिए कर रही हैं वो भी देश को एक डेफिनेशन देता है।
3: बिल्कुल,
2: और यही चाहिए युवाओं से।
3: जी, अक्सर ये सोच होती है कि हम सेना में जाएंगे तभी देश की सेवा कर पाएंगे, तो आप अपने स्तर पे भी छोटे छोटे काम करके देश की सेवा कर सकते हैं। पानी बर्बाद मत कीजिए, पौधे लगाइए, बहुत छोटे छोटे से काम है, तो इनको करके भी आप अपना योगदान दे सकते हैं देश की सेवा करके। कनर बधानी, आपका क्या संदेश है हमारे युवाओं के लिए?
4: मेरा देश के युवाओं के लिए यही संदेश है कि जैसा अभी तक हम चर्चा में कहते आए कि देश के प्रति समर्पित रहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपना एकेडमिक और स्किल डेवलपमेंट करिए और नई से नई ऊंचाइयां हासिल करिए।
3: बिल्कुल, तो आज की बातचीत ने हमें ये समझाया है कि किसी भी सैन्य अभियान के पीछे केवल हथियार नहीं बल्कि साहस, अनुशासन, रणनीति और राष्ट्र प्रेम होता है। संजय सर और राकेश बुधानी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए।
2: धन्यवाद,
4: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ आमंत्रित किया और अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।
3: बिल्कुल सर, इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम, जिसका विषय था पीएम मोदी के 12 साल, ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत। विशेषज्ञ थे ब्रिगेडियर संजय घोष और कर्नल राकेश बुधानी, वार्ताकार थीं दीपा सिंह और प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए रूपक ताल पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबला वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे रूपक ताल पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबला वादन। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
2: कभी हंसाकर

0: कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Gen Z भी है, है also Gen old नई पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।